0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue North East Calgary। प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक M&R Roofing and Siding Limited दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फेशिया स्मार्ट ट्रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R Roofing and Siding Limited।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

0: प्रोग्राम का ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 Trent Avenue North East Calgary

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानने लई आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है यूनिट नंबर 2121 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन बार्स वॉशरूम वैनिटी क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसीं अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जां फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

परथाए साखी महापुरुख बोल दे सांझी सगल जहाना।

गुरमुख होए सो पाओ करे आपना आप बछाणा।

गुर प्रसादी जीवत मरै ता मन ही ते मन मानै।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा दवाई देना अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नू कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो तां इस दी जानकारी लई कॉल करो bobby.dodd@403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130-4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

0: 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
1: ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 है ये कहां से छपा है ये वेद? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली 2। इन्होंने यहाँ लिखा है महर्षि दानंद सरस्वती कृत, लेकिन ये दानंद जी का अनुवादित नहीं है, दानंद जी ने अनुवाद नहीं कर रखा है, गलत लिखा है इन्होंने। चलो हम अपना उद्देश्य पूरा करेंगे। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86। ये है मंत्र नंबर 26। इसमें क्या बताया है, अनुवाद किया है ये, इसमें मूल संस्कृत है, ये सारी मूल संस्कृत है। इसमें ये कबीर शब्द है, कबीर, हम इसको कबीर बोलने लगे, वह को हम वह बोलते हैं, ये कबीर। यहां देखो इनके द्वारा अनुवाद है, ये किसी और ने किया हुआ अनुवाद। यज्ञ करने वाले यजमानों यानी भक्तों के लिए, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को मर्दन करता हुआ नष्ट करता है, विघ्नों को नष्ट करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, क्योंकि भगवान परमात्मा का वास्तविक रूप एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी है, तो यहां हम चरम दृष्टि से उसको नहीं देख सकते, इसलिए वो अपने रूप का हल्का तेज पुंज का शरीर धारण करके, उसको हल्का करके यहां आता है अपने रूप को, इसे सिद्ध कि साकार है भगवान, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। यहां इन्होंने क्या किया है, इसमें यू हलंत वाला रह जाता है, अत्य अलग कर देते हैं, ये अत्यो कबीर अत्यो, रह छोटा हो जाता है, तो उस रह को इन्होंने यहां दो अपसर्ग में बदल दिया, तो ये कवि बना दिया, तो कवि का अर्थ सर्वज्ञ नहीं हो सकता, कवि का अर्थ काव्यकार तो हो सकता है लेकिन सर्वज्ञ नहीं हो सकता, सर्वज्ञ तो परमात्मा ही होता, तो हम इसको हम जैसे इसको हम कबीर देव लिख दें, वो कबीर देव वह परमात्मा कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ यानी बिजली जैसी गति से चलकर वर्णीय पुरुषों को यानी श्रेष्ठ भक्तों को व्यक्तियों को प्राप्त होता है। अब 27 में ये क्या लिखा कि प्रेम की वे सैकड़ों धाराएं, ये अनुवाद इन्होंने ठीक नहीं किया है, जो नाना रूप में स्थिति को लाभ कर रही हैं, वे परमात्मा को प्राप्त होती हैं। अच्छा, प्रकाश पुंज परमात्मा को, प्रकतेजों में परमात्मा को बुद्धि वृत्तियां विषय करती हैं, जो परमात्मा द्यूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, तीसरे पृष्ठ पर यानी वो तीसरे स्थान पर ऊपर भाग पर विराजमान है, तो साकार है, एक देशीय है, एक स्थान पर रहता है और प्रकाश रूप है। अच्छा, अब वो किस उद्देश्य से यहां आता है ये क्लियर करेगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 82 का मंत्र 1-3 तक हम आपको दिखाते हैं। इसमें स्पष्ट लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु यानी सबको सबकी सृष्टि करने वाला परमात्मा प्रकाश रूप और सद्गुणों की वृष्टि करने वाला है, पापों का हरण करने वाला है, वह राजा के समान देखने योग्य है, दर्शनीय है, राजा के समान दर्शनीय है यानी साकार है वह प्रभु, राजा के समान दर्शनीय है, देखने योग्य है, साकार है, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुषों को, वह श्रेष्ठ भक्तों को, अच्छी आत्माओं को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उनको मिलता आकर के। कैसे? जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, इसी प्रकार उत्पन्न वाला परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। आप देखो ना, जिस प्रकार वो परमात्मा कैसे मिलता कि जैसे विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता, जैसे आकाशीय बिजली गिरती है तो वो विशेष किसी स्थान पर गिरती है, जैसे पहले, अभी वही स्वभाव है लेकिन अब काशी धातु रही नहीं, पहले काशी धातु के बेले थाली होया करते थे, परांत भी बेले थाली ज्यादा होते थे, और उनको बाहर अगर वर्षा में रह जाते थे तो उनके ऊपर अमूमन कहीं ना कहीं बिजली अवश्य गिर जाती थी, आसमानीय बिजली, क्योंकि उसका उससे कोई विशेष कनेक्शन है जिस पर वो आकर्षित होती है। तो इसी प्रकार बताया है कि वो परमात्मा उन प्यारी आत्माओं को मिलता है जो मिलने योग्य हैं, उनके लिए आ सकते हैं, क्योंकि परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, वो कुछ एक पुण्यात्माओं को विशेष रूप से मिले, उनको ही ज्यादा वो ही समझ सके उनको, बाकी वो टोड़ गिल 64 लाख तो चेले हो गए थे, वह बिना समझ सके, और अन्य जो ऋषि में ऋषि मंडलेश्वर गुरु आचार्य और वह बिना मालिक को पहचान सके, तो उनके लिए आना ना आना बराबर होता है भगवान का। तो विशेष उन्हीं आत्माओं को आकर मिलते हैं जो उनको समझ सकते हैं और उनका आगे प्रचार कर सकते हैं, जैसे बिजली अपने स्नेह वाले पदार्थ पर आकर गिरती है, इसी प्रकार परमात्मा भी उन अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। फिर किस उद्देश्य से आते हैं ये और देखिए आगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का आपने एक मंत्र पढ़ा कि वह परमात्मा राजा के समान दर्शनीय है और वह वर्णीय पुरुषों को, अच्छी आत्माओं को, जो दृढ़ भक्त हैं उनको, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उनको मिलता है। कैसे मिलता है? जिस प्रकार विद्युत यानी आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को प्राप्त आधार बनाकर प्राप्त होती है। उद्देश्य क्या है उसका आने का, परमात्मा का? अब दूसरा मंत्र है, यहां लिखा है कबीर वेदस्य, ये कबीर इस रह ऊपर लगा हुआ हाफ, तो इसका इन्होंने कवि शब्द कर दिया हटा कर रह। अब जैसे ये समझना जरूरी हो गया, आप देखिएगा ये यजुर्वेद है और इसको ये रह हटा करके दो अपसर्ग भी लगाए जा सकते हैं। ये यजुर्वेद अनुवाद किया है महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने, कंप्लीट 40 के 40 अध्याय अनुवाद किया है महर्षि दयानंद, इसका राइटर नहीं है, केवल अनुवाद करता है। प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली, और ये महर्षि दयानंद सरस्वती कृत है 40 के 40 अध्याय, और ये कहां से प्रकाशित है? प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 प्रॉपर्टी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। अब इसमें दिखाएंगे आपको कि एक 36 नंबर अध्याय में यह स्पष्ट किया, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ये है 6300 अध्याय यानी 36वां अध्याय, इसमें यहां लिखा है रिचे वाचम परपधे मनो यजु परपधे, ये यजु शब्द है यानी यजुर्वेद का जो ये ऊपर का हिस्सा हटा के, जैसे इस पर यहां लिखा था ये यजुर्वेद है, ये रह हटा के और यहां अपसर्ग लगा दी 36 में जाएगी प्रथम मंत्र में, ये प्रथम मंत्र में यजु। अब इसका अनुवाद करते समय दानंद जी ने क्या किया है, यजु को यजुर्वेद लिखा, बिल्कुल ठीक किया। अब इस यजु को कोई नहीं समझ सकता, जबकि इसके साथ ये लिखना पड़ेगा यजुर्वेद है। जब ये यजुर्वेद लिखा जाएगा तो ऊपर रह लाना पड़ेगा, तो हम इसको यजुर्वेद बोलते हैं, यजुर्वेद अपने लोकल लैंग्वेज में। तो ऐसे ही कबीर देव ये अपसर्ग हटा दिए, हटाकर रह हटाकर अपसर्ग लगाने से जो कवि लिख दिया उन्होंने, तो हमने जब कबीर देव लिखेंगे तो रह ऊपर लाना पड़ेगा, तो हम कबीर देव कहने लगे, कबीर कबीर साहब, देव माने परमात्मा। तो ऐसे अब भ्रंश हो गया, इस कवि को हम कबीर कहने लगे। ये वास्तविक नाम है प्रभु का, जो वेदों में प्रमाणित है, और इस यथार्थ नाम से ही परमात्मा यहां आते हैं, और इसी का यथार्थ, ये वास्तव में यथार्थ नाम भी मालिक का यही है। जैसे सतपुरुष अकाल मूर्त सबद स्वरूपी राम परम अक्षर ब्रह्म, ये तो इनके उपमात्मक नाम है, उपाधि के नाम है। जैसे देश के प्रधानमंत्री जी का नाम, शरीर का नाम अन्य होता है, और वैसे उनको प्रधानमंत्री, लैंग्वेज डिफरेंस होने से प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उनका शरीर का नाम कोई और, वास्तविक नाम और होता है, ये उपमात्मक नाम उपाधि के नाम। तो अब यहां कबीर देव को समझने में आसानी हो जाएगी, आपने भ्रमित ना हो गए। ये देखिएगा, अब ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का इब आप दूसरा मंत्र पढ़ रहे हैं। यहां लिखा है कबीर वेदस्य, हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बिजली जैसी गति से हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो। परमात्मा भी कहते हैं अपनी वाणी में, पहुंचूंगा छन्न एक मजन अपने के हेत एक सन में, और आप, इन्होंने लिख दिया कवि, इसको कवि लिख दिया, हमने यह लिखना चाहिए ये कबीर देव है, कबीर देव कबीर साहब, जैसे भी आपको उदाहरण दिया था यजुर्वेद का, तो अब इसको हम अगर कबीर देव लिखा तो यह लिखना चाहिए हमने इसको पूर्ण करके कबीर देव, वो कबीर अगर इसी दीपसोदी हिंदी में लिखा तो कबीर देव लिखे, और हम उसको कबीर देव कहने लगे, कबीर साहब, वो कबीर साहब हैं, आप कबीर

आत्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में लिखा है कि आध्यात्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, मुखे माने उनके मुखारविंद से, उनके मुख कमल से बोली गई वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, और उनको जानकर फिर आप पूर्ण रूप से यथार्थ भक्ति करोगे और आप फिर भ्रमित नहीं रहोगे। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक परमात्म तत्व पर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू भगत बनेगा, यानी तब तो तू भक्ति के योग्य होगा, भक्ति तेरी प्रारंभ होगी। और गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, जब बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत और छोटे जलाशय में प्राणी की जितनी श्रद्धा रह जाती है, उसी प्रकार उस परम अक्षर ब्रह्म के ज्ञान को तत्वदर्शी संत से प्राप्त करने के उपरांत, उस परम अक्षर ब्रह्म की स्थिति से परिचित होने के उपरांत, आपकी जो श्रद्धा हमारे अंदर रह जाएगी, अन्य भगवानों में रह जाएगी। पहले क्या होता था कि सभी साधन तालाबों से ही हुआ करते थे, जैसे सिंचाई भी तालाब से, पानी पीना भी, पशुओं को पियाना भी तालाब से ही होता था। तो इस प्रकार उसमें वर्षा हो जाए तो वो तालाब छोटा तालाब जलाशय होता था, वो भर जाता था, और यदि एक वर्ष वर्षा ना हो तो वो सूख जाता है, और उस पर आधारित प्राणी भी संकट में पड़ जाते हैं, उनकी भी जान चली जाती है, प्यासे मर जाती है। और उन प्राणियों को फिर बहुत बड़ा सरोवर, बहुत बड़ा जलाशय, बहुत बड़ी झील प्राप्त हो जाए, तो 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी जल समाप्त ना हो उसका। तो कहा कि उसके पश्चात उन प्राणियों की आस्था श्रद्धा जितनी उस छोटे जलाशय में रह जाएगी, उसकी बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत, ऐसे ही तेरी श्रद्धा उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति के उपरांत, उसके ज्ञान के प्राप्ति के उपरांत, छोटे अन्य देवताओं में, भगवानों में, ऐसे तेरी श्रद्धा रह जाएगी। अपने आत्मा उस छोटे जलाशय में जो आश्रित थे, वो जल बुरा नहीं था, लेकिन वो अपर्याप्त था, उसकी अक्षमता बहुत कम थी। इसी प्रकार हम जिन भगवानों की साधना करा करते, वो बुरे नहीं थे लेकिन पर्याप्त नहीं थे। और अब हमने पूर्ण परमात्मा मिल गया, जलाशय मिल गया, कौन ऐसा नालायक से जो पाछन रहेगा। अब कोई एमएलए है और उसने कोई मुख्यमंत्री बनाता हो, समझ गई बात, इतना संकेत बतेरा, तो हमने जो उपलब्धि हो तो हम पाछे कैसे पीछे रहेंगे। तो इसी प्रकार इस अध्यात्म तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत आप जी की श्रद्धा अन्य भगवानों में आप बैठ जाएगी, वो बुरे नहीं लगते लेकिन वो मारे काम के कोना, हमने जो वस्तु चाहिए उनके पास है नहीं। तो ये ज्ञान से ही प्राप्ति होती है। अब वो सचिदानंद गण की वाणी सुनाएंगे आपको थोड़ी। अब जैसे आपने श्रीमद् देवी भागवत में पढ़ा के कलियों के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और दुर्गा की पूजा करते थे, अर्कित्ता वेदों में दुर्गा की पूजा प्रावधान नहीं, इसे से देखो उन्हें वेद का ज्ञान नहीं था, उनको विश्वास नहीं हो पाया, ओम नाम का जाप वो जप जपा कर छोड़ छाड़ दिया, फिर अपना जंतर मंत्र, क्योंकि देवी की उपासना का एक मंत्र हमने आपको दे रखा है, केवल उस एक मंत्र से कई वर्षों तक उसका जाप करके सिद्धियां प्राप्त कर लेते, जिससे उनको उन सिद्धियों के आधार पर वो अन्य जनता से फिर धन इकट्ठा कर लेते थे, उन सिद्धियां दिखा उन वो यहां तक सीमित हो गए। फिर पुण्यात्माओं, आप जी को जो मंत्र दिए गए हैं ये पूरे निष्कर्ष यानी यथार्थ मंत्र है, जो प्रथम मंत्र है, तो आप जी ने इसमें एक का किसी का जाप नहीं करना है। जैसे डॉक्टर ने वैद्य ने एक चूर्ण बना रखा है और उस चूर्ण के अंदर उसने हर तरह की दवाइयां मिक्स कर रखी है, 2 तोड़े फलानी चीज, 2 तोड़े वो, 2, और उसमें से एक ने कोई खावे तो दवाई का काम ना करे वो हानि कर देगी, थोड़ा बहुत लाभ भी कर दो,
लेकिन वो रोग

ना कटे तो सभी को मिलाकर खाने से वो रोग नाशक होगी। तो इसी प्रकार वेद ने जो दवाई दी वो सही होती है। अब क्या बताते हैं परमात्मा सचिदानंद घन की वाणी, काछे बेक कहां वे भांडी, गट में बैठी दुविधा रांडी, नारी पांच पच्चीसों पूता, ता कारण फिरता रूता रूता, अजरी बजरी करे बियाना, जिन शब्द अतीत मैल नहीं जाण्या, दोती नेती न्योड़ी कर्मा, इंद्री नाल चरावे बर्मा, गज कर्मी गुरु आई चेरा, धोवे आत कमल नित फेरिया, सट कर्म बंधन है भाई, चोला पाख लगे निकाई, पांचों मुद्रा करे बियाना, जासे भेद अगोचर जाण्या, चौरासी आसन बस कीने, अनरागी नी तत न चीने, काम धेनु का कित है बासा, अमृत दूजे पर वे आसा, काम धेनु दो पियो साधु, दुर्लभ दे सतलोक अगादू, तीन सुन में जम की जाली, आसन योग नाम बिन खाली, चौथी सुन लंघ है जन कोई, आवागमन बहुर ना होई, मेर दंड की बाट बताऊं, पैठ दरी बे अमृत ल्याऊं, अक्षर धाम की डोरी सूची, सोला संखी रामत ऊंची, मकर तार का मार्ग जीना, भेद अभेद शब्द घर चीना, सुन मंडल सतलोक बसेरा, बहोर ना हंसा कर है फेरा, सतलोक से सतगुरु आए, अंसा आन शब्द गुरमाए। अब परमात्मा जो है यहाँ तत्व ज्ञान प्रचार करने के लिए आता है, सच्चा ज्ञान प्रचार करने के लिए आते हैं, तो वो सतगुरु कहलाते हैं, सच्चा ज्ञान देने वाले, क्योंकि नकली गुरु घने होते हैं, इसलिए सतगुरु। यहाँ लिखा है सचिदानंद घन की वाणी में, जो गरीबदास जी को परमात्मा अपना भेद बताया, फिर आदरणीय गरीबदास साहेब जी ने आगे ये अमरवाणी लिपिबद्ध करवाई, उसको पढ़ रहा दास। सुन मंडल सतलोक बसेरा, बहुर ना हंसा कर है फेरा, सतलोक में सुन मंडल में सतलोक है सबसे लास्ट पॉइंट ऊपर, वो तीन चार लोक है, और उसमें सुन मंडल सतलोक बसेरा, और वहां जाने के बाद बहुर ने हंसा कर है फेरा, फिर वो लौटकर संसार में कभी नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 में जो आपने पढ़ा, तत्वदर्शी संत की पहचान बताई, और फिर कहा कि उसके पश्चात उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जल जाने के बाद प्राणी फिर लौट कर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है वही पूजा के योग्य है, नथिंग एल्स। तो यहां उस सचिदानंद घन की वाणी में ये स्पष्ट है, सुन मंडल सतलोक बसेरा, सुन मंडल सुन मन ऊपर, और वहां पर सतलोक एक स्थान है, बसेरा है रहने की जगह है, बसेरा माने रहने का स्थान, और बहोर ना हंसा कर है फेरा, वहां जाने के बाद वापस यहां फिर कर नहीं आते, सतलोक से सतगुरु आए, अंसा आन शब्द बिरमाए। सतलोक से वो सतगुरु यानी परमपिता परमात्मा सतगुरु रूप बनाकर आए, ज्ञान देने के लिए स्वयं आए, और अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान से परिपूर्ण किया। बंदी छोड़ कबीर गोसाई, दरवे नूर जल में ले जाई, अदली आद कबीर प्यारे, जिन हंसा भव जल आण उबारे, लख 84 बंधन तोड़े, अनरागी से चश्मा जोड़े, शब्द विहंगम सैन उदासी, सुन मंडल रहते अविनाशी। वो परमात्मा ऊपर सुन मंडल में रहता है, यही तो यथार्थ जो परमात्मा कबीर जी का ज्ञान बता रहा है वही हमारे वेद बता रहे हैं, और बीच में जो अड़ंगा हमारे भर दिया, भगवान निराकार है, ये है वो है, ये सारा बकवाद में रखी थी इन्होंने, जिनकी दंत कथा थी, लोक वेद था। शब्द विहंगम सैन उदासी, सुन मंडल रहते अविनाशी, सूली ऊपर सेज लखाई, कहो गुरुदेव कौन विद जाई, तख्त हजूरी चाकर लाए, सतगुरु सत के दाग दगाए, सपत अंड पर धाम हमारा, जहां ओहंग सोहंग नहीं पसारा, जहां ब्रह्मा विष्णु वेद न बाणी, शेष महेश गणेश न जानी, जहां राम रहीम करीम ना कोई, अलय अलेख इसम नहीं दोई,
खुद खुदाई जाना भाई, तहां कहो किसकी ठकुराई। नो अवतार जहां नहीं कोई, सबद अतीत रहे निर्मोही। कृत्रिम ख्याल सबक नहीं बाजी, वेद पुराण न पंडित का जी। धर अंबर नहीं पावक पानी, अगम अगोचर अकत कहानी। जहां जीव न सीव न सुरत न नरता, ज्ञानी गुणी मूड अनुसरता। बेगम पुरा ब्रह्मगत आदु, जहां दास गरीब विराजे साधु। अब इसमें क्या बताया है कि ये कच्छ भेग का हमें बांडी, नाना प्रकार के वेशभूषा बना के घर त्याग कर चले जाते हैं और फिर दुनिया को भ्रमित करते हैं, उनको यथार्थ ज्ञान नहीं है। दोती नेती न्योड़ी कर्मा, इंद्री नाल चलावे वर्मा। सौ पाखंड करते फिरते हैं ये लोग। दोती नेती न्योड़ी यानी ये जो क्रियाएं करते हैं ना, योगिक क्रियाएं करते हैं ये लोग, उनके बारे में। गज कर्मी गुरु आई कचेरा, धोवे आंत कमल नित फेरा। गज करनी होती है जैसे पानी पी कर दो तीन चार गिलास मुंह में और उंगली दे कर ऐसे वापस कर देते हैं। कहते गज कर्मी गुरु आई चेरा और धोवे आंत कमल नित फेरा, यानी इससे आंतें साफ हो जाती हैं। और जैसे नाभि कमल है, पेट के अंदर नाभि कमल है और इसको साफ करते हैं एक विधि से, अंदर अंदर अभ्यास कर लेते हैं, वो पेट को घुमा घुमा कर वहां जमे हुए मल को बाहर निकाल देते हैं। उस क्रिया का इतना ही लाभ है और उससे कोई लाभ नहीं, केवल शरीर को साफ करते हैं। देखिए जानते इसमें क्या कहा परमात्मा ने, गज कर्मी गुरु आई चेहरा वो धोवे आंत कमल नित फेरा। फेरा मैंने घुमाया। आपने देखे होंगे कई योगी टीवी पर भी आते हैं और पेट को ऐसा घुमा देते हैं, पेट को ऐसे नो घुमा देते हैं और उससे हम प्रभावित हो जाते हैं, भाई कमाल कर दिया, यूं तो तोड़ पाट दिया इसने। लेकिन उसका यूज क्या है, उसका बेनिफिट क्या है? उससे कहते पानी पी कर निकाल दिया, कुछ आंत साफ होगी। फिर ऐसे पेट की घुमाकर, ऐसे ऐसे घुमाकर उससे में और जो मल था अंदर जमा हुआ उस आंतों में, उससे वो भी साफ हो जाए। बस इतना ही काम है इसका। इससे परमात्मा प्राप्ति नहीं, ये तो एक शरीर को स्वस्थ रखने की विधि है। आगे देखना, षट कर्म बंधन है भाई, चोला पाख लगे ना काई। ये षट कर्म जो है ये भी तुम्हारे ऊपर बंधन है, तुम इनमें लागे रहोगे, भक्ति हो को ना फंड में बड़े रहोगे। और जो परमात्मा ने दिया हुआ शरीर है वो सूक्ष्म शरीर है, भक्ति करने से, उस परमात्मा की साधना करने से आपके ये रोग भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन परमात्मा का कहने का भाव ये नहीं है कि योग अभ्यास ना करना और वहीं तक सीमित है, जो वो व्यर्थ है उनका जीवन। पांचों मुद्रा करें बियाना, जासे भेद अगोचर जाना। चौरासी आसन बस कीने, अनरागी नीतत न चीने। ये चौरासी प्रकार के आसन होते हैं, ऊपर न पैर नीचे न सिर कर लेना, शीर्षासन और भी कई प्रकार के आसन है। कहते इन सबने भी कोई साध लेता है, सबका अभ्यास भी कर लेता है तो उसका क्या बनता है, यदि उसके पास वो तत्व ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है। तीन सुन में जम की जाली, आसन योग नाम बिन खाली। चौरासी आसन सिद्ध कर लिए, पांचों मुद्रा तैयार कर ली, ये क्रियाएं भी कर ली, पानी पी कर निकाल दिया, पेट घुमा लिया। कहते आसन योग नाम बिन खाली। अगर आपके पास सत साधना नहीं है, ये सच्चे नाम की भक्ति आप नहीं कर रहे हो, तो वो तुम्हारे योग और आसन करे हुए व्यर्थ जाओगे।

0: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिवें गैराज फ्लोर दे स्ट्रोंग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी। पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होण वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

0: 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
1: ये दास इस क्रोथाकांड के अंदर झूठे केस में जेल में था। वहां अलग से एक चार कोठड़ियां थी जिनमें वहां आगे आंगन था और उसके अंदर एक नीम का पेड़ था और वहां एक बिल्ला आता था, एक बिल्ला बिल्ली का बच्चा, और वो उसको थोड़ा वो दूध डाल देते वहां। वो क्या करता था, दूध पी के और फिर उस पेड़ के सहारे न्यो खड़ा हो जाता, कभी खड़ा और उसके पैर लगा के ऊपर और न पूरा पेट की नो जैसे आसन से करता था, पूरे रूप से नो पेट लगा के नो पूरा और फिर उतरता, फिर दो तीन बार करता। और वो क्या करता था, वहां कोने में टट्टी होता था, फ्रेश होता था तो पहले पंजों से मिट्टी खोद लेता था, वहां फ्रेश होकर के फिर मिट्टी से पंजों से उसको मिट्टी से ढक देता था। तो वो पिछले जन्म में योगी था, पिछले जन्म में योगी था। ये क्रियाएं उसके इबी भी याद है और सूचे ढंग से रहता था। पहले हम देखा करते थे बहुत से व्यक्ति हमारे छोटे से, हम तब थोड़ा फ्रेश होकर के जंगल पानी फ्रेश होकर के और मिट्टी से ढक देते थे कि इसकी बदबू बाहर ना जाए। इस प्रकार के ये योगी पुरुष ज्यादा करते थे तो उनकी उस सच्चा नाम ना होने से आज वो उस बिल्ली की योनि में भटक रहा है। तो यहाँ क्या कहते हैं परमात्मा, तीन सुन में जम की जाड़ी आसन योग नाम बिन खाली। अब तीन सुन, इन तीन सुनों में जैसे काल के लोक की, ये जैसे काल ने अपने ब्रह्मांड बना रखा है, ग्रुप बना रखा है ब्रह्मांड का, इनके बीच में एक वैक्यूम प्लेस होता है जिसको सुन बोलते हैं, वैक्यूम प्लेस खाली स्थान होता है। और फिर उसके बाद जो ब्रह्म लोक, ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड और परब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांड का आपस में संयोग है, उनके बीच में भी वैक्यूम प्लेस है, खाली स्थान सुन है, वो दूसरी। और तीसरी फिर परब्रह्म के और सतलोक के बीच में वैक्यूम प्लेस है, तीसरी सुन। और चौथी सुन है वो परमात्मा सतलोक में। तो क्या कहते हैं, तीन सुन में जम की जाली आसन योग नाम बिन खाली, चौथी सुन लंघे जन कोई आवागमन बौर न होई। अब आपको सुनाते हैं कि कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए। गीता के अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी आप मनमुखी नाम जाप करते हैं, तो उनकी न तो उनका कोई सुख होता है, ना उनकी सिद्धि होती है, न ही उनको कोई गति प्राप्त होती, अर्थात यूजलेस। फिर 24वें श्लोक में 16वें अध्याय में कहा गीता जी ने, श्रीमद् भगवद गीता में, इससे अर्जुन तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, वो सूक्ष्म वेद में विस्तार से कही गई है। उनमें सारा विश्लेषण दिया गया है कि ये ना करनी चाहिए, ऐसे करते हैं वो ये गलत है, ये ऐसे करते हैं वो ठीक नहीं, और ये करनी चाहिए। गरीबदास जी को परमात्मा ने अपना ज्ञान दिया ताकि ये मेरा गवाह बने, तो संत गरीबदास जी ने परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान को बहुत ही प्यारे शब्दों में हमारे लिए एक तोहफा छोड़ रखा है। क्या बताते हैं, सट दर्शन सट बेख कहावे बहुविध दुंदू धार मचावे, ये तीर्थ व्रत करे तरबीता वेद पुराण बट पढ़त है गीता, यो भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा यो भी वैदा। वैदा मीन यूजलेस, व्यर्थ है। कौन कौन सा व्यर्थ है, सट दर्शन सट बेख कहावे, ये गिरी पुरी सन्यासी नागा कनपाड़े नाथ वैष्णो कहते हैं, 6 प्रकार के सट भेख, 6 प्रकार के इनकी विधि है, सट भेख कहावे हैं। और इनकी साधना देखने को धूम धूम धर्मचारी है, कोई खड़ा होकर तपस्या कर रहा है, कोई उल्टा सिर करके कर रहा है, कोई कान पड़वा रहा है, कोई निराहार रहता है, कोई एक पैर ठाकर गर्दन में रख लेता है, खड़ा होकर साधना कर रहा है। नो दिखा आम आदमी ने भाई तो डूंडा ठा रहे हैं भक्ति का, और उनके वो सारे डले ढो रहे हैं, क्योंकि ये पता चलेगा हमें सट दर्शन सट भेख कहा में बहुविध धुंधु धर्म चावे, तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़ते हैं गीता, वेद पढ़े तीर्थ व्रत करें, वेद पढ़नी यार फिर ये डेड हो है। उसने वेद समझे को ना, वेद पढ़े पर वेद न जाने ये बातें पुराण 18, अर्दड़ को अंधे पत्ते खोआवे भूल गया सृजन हारा, वेद पढ़े और वेद समझा नहीं, और फिर वो उल्टी साधना कर रहे तो वेद समझे नहीं उन्होंने। तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़त है गीता, ये भी वैदा है। अब वेद पढ़ लिए, गीता जी का नित पाठ कर लिया, और गीता जी बता क्या रही है, श्रीमद भगवत गीता में वर्णन क्या है वो समझा नहीं, तो वो पढ़ा हुआ पाठ व्यर्थ है। अब जैसे गीता जी में लिखा है ऐसा करने से लाभ होगा, इसलिए कहा कि ये भी वैदा है, ये भी व्यर्थ है। चार संपदा बावन द्वारे जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे, ये चार संप्रदायें बनी हुई हैं, और इन संप्रदायों में कहते निज नाम नहीं है, माला घाल हुए हैं मुक्ता, ये सटदल उवा बाई बकता, ये 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि सतयुग के ब्राह्मण, ये ऋषि कहो चाहे ब्राह्मण कहो, ये सारे उवा बाई बकदे हैं। ये परमात्मा की वाणी बता रही है, उससे पहले आप जी को श्रीमद देवी भागवत से प्रमाणित कर दिया, गीता प्रेस गौरखपुर से प्रकाशित है, 400 पृष्ठ पर और 6 सेकंड में। वो क्या कहते हैं कि व्यास जी कह रहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे, बता। तो वही यहां परमात्मा कह रहे हैं ये माड़ा गाल हुए है मुक्ता, माड़ा गाला करते जे गली में। अब ये माला गले में डालने की बीमारी कहां से शुरू हुई, पहले क्या था, ईब तम ये अप टू डेट बाबूजी बनकर पेंट सेंट पे रहा, गोज भी कोई किलो वाले थे जेब, पहले कोई कुर्ते नहीं हुआ करते ना पजामे, एक चादर लपेट लिया करते शरीर पे, धोती बांध लेते और उसी में से शरीर पे कर डाल लेते थे, जेब नहीं होती थी। और माला एक नाम जाप करने का एक साधन है, तो वो जाप करते इतने जाप करते फिर उस माला को गले में डाल लेते थे ऋषि मुनि, और वो भक्त जैसी भी साधना करते थे ओम नाम का जाप करते थे उनसे उसमें कुछ शक्ति आ जाती थी, वो किसी को आशीर्वाद भी दे देते थे उनको लाभ हो जाता था, किसी कोई उनको खाना खिला देता वो आशीर्वाद देते थे, अपनी कमाई में से उनको कुछ वो बेनिफिट दे देते थे भक्ति का। तो आम जनता की मन की भावना की जिसने माला पहन रखी भगत आदमी है और उस माला वाले की घनी श्रद्धा से सेवा करन लागे, गांव में आजा सब आज मारा रोटी खाइयो जी, आज मारा खाइयो जी है, तो वो न्यो आदर सत्कार शुरू हुआ। तो फिर बाद में कुछ पाखंडिया ने पाखंड शुरू कर दिया, जो माला डाला है उसकी पूजा होती है, तो नकली लोग भी माला डाल के घूमन फिरन लग गए। अच्छा फिर कोई दो दो डालन लग गया माला, दो माला डाल रहा, उन्हें सोचा बोली आत्मा होया करती सब डालो, उन्हें सोचा दोनों आता भक्ति करता होगा, यो गणा भगत, और दो चार चार गालन लाए गए वो और गणे भगत मान लिए उनकी पूजा करने। तो ये कहते हैं परमात्मा कि माला घाल हुए है मुक्ता, ये माला गल में घालने से अपने आप को मुक्त समझते हो नहीं, और सट दल ओवा बाई बकदा, इन सट दला में ये चार संप्रदाय कौन सी है, चारों शंकराचार्यों से जो चला है ना मार्ग, और इन चारों शंकराचार्यों का विधान आप पढ़ लो तो हंसी आवा अपना ईव, अब आवे पहले तो नहीं पता था। तो यहां ये बता रहे हैं कि सटदल उवा बाई बकदा, ये सटदल माने 6 प्रकार के जो भेख बना रखे हैं ये सब उवा बाई बकते हैं, इनको यथार्थ क्या नहीं है। बैरागी बैराग न जाने बिन सतगुर नहीं चोट निशाने, ये वैरागी बने फिर कहते इनको वैराग का पता है कोई नहीं। अब इसके ऊपर आगे बताया है, बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं, और 500 नार 2500 लड़के ये धुंधु धार मचावे हैं। अब यहां क्या बताते हैं कि वैरागी बन गया बैराग ले लिया, घर छोड़ दिया, घर तक छोड़ दिया। कहते हैं एक नारी त्याग दीनी, पांच नारी गए लवे, पाया ना द्वारा मुक्ति का, सुखदेव करीब सैलवे। सुखदेव ऋषि जी ने बाल ब्रह्मचारी रह करके और आकाश में भी उड़ने की सिद्धि उसको प्राप्त थी, सब जगह घूम भटक लिया, लेकिन उसको भी वस्तु नहीं मिली। जब तक संत नहीं मिले, पूरे संत नहीं मिले, उनको भी राहत नहीं मिली, कोई रास्ता नहीं मिला। क्या कहते हैं, तूने एक नारी त्याग दी। अब देखो भगत जो आदमी भक्ति करता है वो घर त्यागता किस लिए है कि मेरे मेरी पत्नी मेरी भक्ति में बाधक है। परमात्मा कहते हैं कि एक नारी तो त्याग दी तने, भक्ति में बाधक जान के। अरे ये पांच नारी गैल वे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये पांचों नारी तेरे साथ रे, इन ने त्याग, इन ने चे तो घर में रह के त्याग और चे जंगल में बैठ के त्याग, तब मोक्ष प्राप्ति होगी। उस इनको ये त्यागने को बालकों का खेल नहीं, इसको त्यागने के लिए विधि है, यथार्थ मंत्र है, उनके जाप से कुछ दिनों के अंदर अपने आप शरीर में एक ऐसी व्यवस्था उत्पन्न होने लग जाएगी, आप चाहते हुए भी विकारों को उत्पन्न नहीं कर पाओगे, प्रेरित नहीं हो पाओगे, ऐसी स्थिति शरीर की बन जाएगी। तो वो मंत्र एंटीबायोटिक है, वो तन मिले नहीं, उनके ना मिलने से एक नारी त्याग दी और जंगल में चला गया। कहते हैं एक नारी त्याग दीनी, पांच नारी गैल वे, पाया ना द्वारा मुक्ति का, सुखदेव करी वो सैल वे। कहते हैं सुखदेव ऋषि बहुत घूम लिया, तुम तो पृथ्वी पर घूमते हो, वो ऊपर के लोकों में भी चला जाता था तो भी मोक्ष का रास्ता नहीं मिला उसको, मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं हुआ। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुर नी चोट निशाने, ये बैरागी बैराग नहीं समझ रहे और बिना सतगुरु के चोट निशाने पर लगे नहीं, यानी यथार्थ ज्ञान यथार्थ भक्ति विधि सतगुरु के बिना मिले नहीं और तब तक मोक्ष हो नहीं सकता। बारह बाट बिटम बिलोरी, सट दर्शन में भक्ति ठगोरी, इन सट दर्शनों में चिन्नैसी गिरी पुरी नागा उगड़ और ये नाथ कनपाड़ी सुके नाथ, कहते इन में भक्ति जन्म ठगने की है, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं बोली आत्माएं। बारह बाट बिटम बिलोरी, सट दर्शन में भक्ति ठगोरी, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा, सन्यासी दस नाम कहावे, शिव शिव करे न संत से जावे, निर्वाणी नी कछ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। देख कमाल कर दिया, कहती है सन्यासी जो है ये दस नाम ही होते हैं, ये शिव को भगवान मानते, ये ब्रह्म न भूल गए, ब्रह्म तक की साधना नहीं करते। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में यही निर्णय दिया है। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कहता है कि अर्जुन ये तीनों गुणों के उपासक, रजगुण ब्रह्मा जी सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी की उपासना करने वाले, इनका ज्ञान इस त्रिगुण में माया के द्वारा जिनका ज्ञान हराया जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी नहीं करते, ब्रह्म साधना भी नहीं करते। तो यहां परमात्मा अपनी वाणी बता रहे हैं कि ये वेदा है क्या, सन्यासी दस नाम कहां में, शिव शिव करे ना सन से जावे, किसी का भी शंका समाधान नहीं है, किसी कोई भी निरसंशय नहीं है, शिव शिव करते हैं लेकिन वो ब्रह्म की साधना भी भूल गए, और शिव जी का यथार्थ मंत्र भी और है जो ये दास आपको बताता है। सन्यासी दस नाम कहावे, शिव शिव करे ना संशय, निर्वाणी नी कछ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा, वो ब्रह्म लोक की साधना भी छोड़ दी, ओम नाम का जाप भी नहीं करते, ये भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा, ये भी वैदा, सुन सन्यासी कुल कर्मनासी, भग में प्योंदी भूले धोंदी, चल छिद्र की भक्ति ना कीजे, आगे जवाब कहो क्या दीजे, यो भी वैदा है, ब्रह्म कर्म भैरो को पूजे, सत शब्द साहिब नहीं सूझे, ब्रह्म कर्म अनुपासनाएं करते हैं, भैरो की पूजा करते हैं और सत शब्द साहिब नहीं सूझे, सच्चा नाम सत शब्द सच्चा नाम सतनाम और सच्चा साहिब परमात्मा तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ, वो समझ में आया नहीं। जंगम जैनी फोकट फैनी, नाम ने चीन्या गुण गुरु गुण ही ना, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा यो भी बैदा। नगन निरासा तन कुतरासा पशु प्राणी समान समानी यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा यो भी बैदा। अब क्या बताते हैं, नगन जो कति निवस्त्र रहते हैं नागा और ये जैनी लोग कहते हैं नगन ये भी निराश जाएंगे क्योंकि इनकी साधना ठीक को ना। नगन निराशा और तन को त्रासा शरीर को त्रास दे रहे हैं, गर्मी सर्दी सहन करते हैं नंगे फिरे। प्रभु भगवान ने शुद्धि दे दी, दिमाग दे दिया, अपने गर्म कपड़े पहन लो, सर्दियां में भक्ति करे पीछा छूटेगा। एक बाबा जी ने बोला मैं अवधूत हूं। अच्छा अवधूत है, ठीक है भाई। क्या उसने एक कपड़ा बांध रखा गोड्या तो ऊपर ऊपर का एक लंगोट और कुछ नहीं ले रखा, जनवरी का महीना। और वो बैठा रात ने मैं उठा, वो छुड़ाने जा करते हम पहले वहां, ये काफी आते हैं इस तरह के बनावटी से महात्मा। और उसे दिन में बात हुई बोला मैं अवधूत हूँ। अवधूत का अर्थ है बिल्कुल नहीं वस्त्र रहना, एक लंगोट और ये कपड़ा लपेट लिया कर पर्दे पे। और वो सारी रात बैठा नू को डाडा लागे भक्ति कड़ा हो चीज पे और तो उठ के सोए जो। और वो बैठा बरंडे में, मैं उठा मैं बाबा जी क्या हाल है नू कर ना उसकी जबान खुला मैं मर रहेगा बेटी का बाप। फिर चाय लाया बनवा के उसकी खातिर, जब तक मुझे आदेश नहीं था नाम लेने का। गरम गरम चाय लाया एक गिलास सारी पी गया गट गट। मैं बोला कपड़ा वड़ा मिला ना ना ना ना कपड़ा नहीं। वो ड्रामा कर रहा उस तरह उसने लोग पसंद करें भाई, तो बड़ा अवधूत आदमी हर कुछ भी नहीं लेता। तो भक्ति तो उसका याद रही ना, जाडा याद रहा सारी रात, सर्दी याद रही, भक्ति नहीं हो सकती ऐसी ये बनावटी बातों। नगन निराशा तन कुतरासा ये पशु प्राणी समान समानी, कहते नंगे अंडो तू जो पशु कुत्ते जैसे हुए भी नहीं वस्त्र फिरे सारा दिन, तो अगले जन्म में तुम्हारी ये डिमांड भी पूरी हो जाएगी। हाँ अगले जन्म में कुत्ते बना देगा तुमने हड्डियों। फिर वेद पुराणी कथा कहानी पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले ये भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा यो भी वैदा। कहते हैं वेद पुराण अरे उनके ऊपर कथा कुथा बना दी, पढ़ पढ़ भूले पढ़े लेकिन अर्थ नहीं खुले, इनके अर्थ तुम समझ नहीं सके इसलिए ये सारा जीवन बर्बाद कर दिया। भूले जोगी रिधि के रोगी कान चरावे भस्म रमावे यो भी वैदा है व्यर्थ है। तोड़े पाती आत्मघाती मूड अनाड़ी जड़ से तारी, ताल मंजीरा मन नहीं थीरा बहुविध नाचे नाम न बाचे। यथार्थ नाम का जाप नहीं करते और सौ पाखंड करते हैं। तपा अकाशी बारह मासी मौनी पीठी पंच अंगीठी यो भी वैदा है। बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं, और पांचों नार पीसों लड़के ये धुंधू धार मचावे हैं। अब कहते हैं ये वैरागी सन्यासी सेवड़े ये जो है शरीर पर राख लपेट ली, माथे पर लाली नरी, मुंह पर लाली, हाथा के लपेट ली, कहते हैं ये इस तरह के जो तुम आडंबर किए हुए हो इसे परमात्मा नहीं प्राप्त होता, क्योंकि आपके अंदर वो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ये सभी आपके अंदर उत्पात मचा रहे हैं। कंठी माला और मृग छाला सिर पैर जटा रखा हुए हैं, ढोलक ताल झालरी पीटे हैं फिर ताना री री गावे हैं यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। बैधा क्यों जाण्या हम सतगुरु भेंटे न्यू जाण्या। गरीबदास जी से पूछा कि आपने इसको कैसे समझा ये बैदा है। गरीबदास जी कहते हैं मुझे सतगुरु मिल गए, मुझे सतगुरु मिल गए कबीर परमेश्वर जी जो परमात्मा स्वयं आते हैं यथार्थ ज्ञान देने के लिए सतलोक से चलकर मुझे वो मिले थे, इसलिए पता चल गया कि ये बैदा है, ये व्यर्थ की साधना है। कंठी ये क्या करते हैं जो वैष्णो परंपरा है विष्णु जी के उपासक, वो तुलसी की लकड़ी की एक मनिया और एक धागे में बांध कर डालना है गले में, उसको कंठी बोल रहे हैं। और उसी की परंपरा इस कबीर पंथ में घर कर रही है। वो भी उस कंठी के चिपट रहे हैं और माला गाली गल में। तो यहां बताते हैं कंठी माला और मृगशाला दो सिर पे जटा रखा हुए हैं और ढोलक ताल झालरी पीटे फिर ताना रे री गावे। यो भी व्यर्थ है। मन के योगी मन के भोगी गुल्लर पेट पढ़ावे हैं गुजबीर का मरम ना जाण्या भद्र भेख बनावे हैं करुआ और कॉपी न लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं खुद्या कुत्ती गट में दुखी फिर ग्रह द्वार आवे हैं। अब घर छोड़ दिया भगवान पाने के लिए नुगे घर त्याग कर जंगल में जा बैठा और फिर लगी भूख कड़ाके की फिर चला नगरी में दिए माई है? तो परमात्मा कहे फिर घर क्यों छोड़ दिया वो घर पर अपनी बनाई रोटी मिलने थी अपना खा और भजन करे पेट के लिए धंधा भी करता और अपना मालिक का नाम लेता। अब क्या बताते हैं करुआ और कॉपी न लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं। करुआ बोला एक हाथ में लोटा ले लिया और एक तन पे एक लंगोट बस बनखंड गुफा बनावे हैं गुफा में जाकर रहने लगे। गुफा भी तो क्यों वो किसी लिए बनाई होगी वह गर्मी सर्दी ना लागे उसमें जा पड़ा। फिर कहते हैं खुदा कुत्ती गट में दुती फिर गृह द्वार आवे हैं। वह भूख लगी जो फिर गृहस्थी का वरना गाद फैलाया के फिर घर किस लिए छोड़ा था। परमेश्वर आए थे कबीर जी उन्होंने हमें एक ट्रायल करके दिखाई थी रिहर्सल करी थी बताई थी एक एग्जाम्पल कोड किया था कि न्यू रहा करो अपना काम भी करे और गणे धन की जरूरत को ना और जब तेरा आठ लाख गएगी मान ले तू सच्ची दिल से भक्ति धर्मदान धर्म कर रहे हर कभी कोई किसी प्रकार का भी आपके ऊपर संसारिक व्यवहारिक कोई दबाव आवेगा खर्चे का तो ऐसे उसको भी दूर करूंगा मैं जैसे परमात्मा रिहर्सल करके दिखाई थी। परमात्मा कबीर जी के अपना कोई बच्चे नहीं थे ना पत्नी थी ना माँ बाप थे लेकिन एक रिहर्सल करने के लिए और हमें उदाहरण देने के लिए दो मुंह बोले मात पिता नीरू और नीमा और दो मुंह बोले बेटा बेटी जो मुर्दे जिंदे किए थे बालक लड़का और लड़की 12-13 साल के थे तो उनको अपने साथ रखा एक परिवार सा दिखाया खुद कपड़ा बुनते थे उससे जो इनकम होती थी उसको खुद भी प्रयोग करते थे और भंडारा साथ में धर्म भी करते रहते थे। और जब इन नकली लोगों ने परमात्मा की बेइज्जती करनी चाही झूठी चिट्ठियां लिख दी 18 लाख व्यक्ति आगे कबीर जी भंडारा करेंगे झूठा लिख दिया तो परमेश्वर ने उन 18 के 18 लाख को 3 दिन तक भोजन करा दिया अरबों खरबों रुपए खर्च हुए। तो परमात्मा कहते हैं अगर तुम ऐसे रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ ऐसे रहूंगा। तो घर त्याग कर जाने की बजाय परमात्मा ने उदाहरण दिया है कि तुम अपने घर में रहो अपना दैनिक कर्म करो लेकिन भगवान की भक्ति ऐसे करो जैसे मैं बता रहा हूं फिर तुम्हें मोक्ष होगा। खाखी और निर्वाणी नागा सिद्ध जमात चलावे हैं रण सिंगे तुरही तुतकारा फिर गागड़ बांग गुटावे हैं। बता अब ये बांग क्यों पीने लगे जंगल में जाने वाले बाहर जो घर त्याग जाते हैं क्यों पहले तो निकले बेचारे परमात्मा पाने के लिए श्रद्धालु आगे वो नाड़ी संत टकरा गए जो भी जिसका जैसा फिट हो गया उसने उसी रंग में रंग दिया फिर वो भांग इसलिए पिलाते हैं कि कहीं इनके बालक याद ना आ जाए भाग जाए यहां से उन्हें चेले चाहिए मनुष्य उनको व्यर्थ कर जाते हैं। काशी गया प्रयाग महोदित जगन्नाथ को जावे हैं लोहागर और पुष्कर पर से वहां द्वारका दाग दगावे हैं यो भी बैदा है वैदे से भेद अलैदा यो भी बैदा। काशी गया प्रयाग महोदी और जगन्नाथ को जावे हैं और लोहागर और पुष्कर पर से द्वारा दाग दगावे हैं। कहते ये भी व्यर्थ है अपुण्य आत्माओं परमात्मा की महिमा से अपरिचित होने के कारण यदि हमें पहले अगर कोई ये बात कहता हमें ये ज्ञान ना होता कि जगन्नाथ में काशी में प्रयाग में महोदधि में लोहागर पुष्कर आदि जाना व्यर्थ है तो हमारी त्योड़ी चढ़ जाती हम नाराज हो जाते अरीब हमारा गीसा गल है सच बताए रखी है कति वो तो व्यर्थ की पूजाएं थी डले डोवा थे जीवन खोआ थे अपने बर्बाद कर रहे थे। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे हैं। काटे शीस नहीं दिल करुणा वो जग में साध कहावे हैं। जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा यो भी बैदा बैदा क्यों जाने हमने सतगुरु बेटे नो जाने। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 15 में कहा है कि इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है अर्थात जो इन्हीं की साधना इन्हीं से मिलने वाली राहत के ऊपर दृढ़ हो चुके हैं और किसी की बात सुनने तैयार नहीं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दुष्ट कर्म करने वाले दूषित कर्म निकम्मे कर्म करने वाले मूर्ख गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कहता श्री कृष्ण में प्रवेश करके कि वो मेरी भक्ति भी ना करते। अब यहां इसको उनको चार इकट्ठी चार गाली दी है राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्ट कर्म करने वाले मूर्ख। पुण्यात्माओं एक बार कुंभ का मेला भरा था और कुंभ पर्व का संयोग हरिद्वार में हर की पैड़ियों पर हुआ। उसमें एक समय निर्धारित होता है वो सीमित सा समय होता है कि इस दौरान पर भी लगेगी और उस पर भी के दौरान जो स्नान कर लेगा उसका मोक्ष हो जाएगा जैसा भी लाभ उन्होंने सोच रखा अपना दंत कथा से। उस आधार पर ये गिरी पुरी नागा कनपाड़े वैष्णो ये सभी संत साधु जिनको हम संत कहते हैं साधु कहते हैं ये चले गए वहां नहाने के लिए पर भी में कुंभ के मेले पे और ये वहां इकट्ठे हो जाते हैं गिरी गिरी वाले ग्रुप में पुरी पुरी वाले ग्रुप में सन्यासी सन्यासी वाले ग्रुप में नागा नागा वाले ग्रुप में और वैष्णो अपने वैष्णों के ग्रुप में वहां इकट्ठे हो जाते। जब आता स्नान करने का समय तो इनका हेड तो आगे आगे होता है बाकी उनके पीछे पीछे स्नानार चल पड़ते। ये बहुत पुराने समय की बात है तो उस समय सबसे पहले नागा जो कति नंगे रहते हैं वो चले गए उनका ग्रुप चला गया स्नान करने के लिए। सबसे पहले वो अर्की पैड़ी पे वो पहुंच गए उधर पीछे से वैष्णो साधुओं का ग्रुप आ गया। अब वैष्णो ने देखा कि नागा पहले स्नान करने वाले हैं उन्होंने आवाज लगाई कि नागाओ हम पहले स्नान करेंगे हम सर्वश्रेष्ठ हैं तुम बाहर आ जाओ। नागाओं ने कहा कि नहीं हम सर्वश्रेष्ठ हैं हम नी वस्त्र हैं हम कोई इच्छा भी नहीं रखते हैं हम कपड़ा भी नहीं रखते हैं हम सर्वश्रेष्ठ हैं हम प्रथम स्नान करेंगे। तो वैष्णो साधु कहने लगे तुम नंगे रहते हो पशु की तरह टट्टी के हाथ भी ना धोते शरीर फिरो बार मरो। अब नागा इतनी टार कड़े उठे थी उन पर अब बताया ना बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं और पांचो नार पच्चीसो लड़के धुंधो धार मचावे हैं। इवो काम क्रोध वो क्रोध रूपी राक्षस वो अंदर ही था उसने बजा दी विसल।
2: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11, 2316, 27 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
1: मैं जनाब मौला अली सरकार दा एक वाक्या पेश कर दिया। एक सवाली ने आके सवाल कीता हजरत मौला अली सरकार दे के सरकार मैनू रोटी दे, मैं बहुत दिनों तो भुखा हूं। जनाब मौला अली सरकार दे एक गुलाम था जिन्हां दा नाम कंबर सी। मौला अली सरकार ने कंबर नू फरमाया कि सवाली नू रोटी दियो। कंबर कहिंदा है कि सरकार रोटी संदूक है जी। सरकार मौला अली कहते ने कि संदूक ही दे दियो। कंबर कहता है कि जनाब संदूक उठते

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो तां इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिन

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-777-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130-4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी
2: सदा रहे

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700

0: कैलगरी विच 24 घंटे सत्तो दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ताड़ी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामां संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507, 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, North East, Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है यूनिट नंबर 2121 51 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन बार्स वॉशरूम वैनिटी क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

मालवा टायर्स नो 403-899-1985 या फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज का पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैंड लई तुसी अज ही निर्वैर जोहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जोहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानने लई आज ही अपने घरां ते कारां दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, North East, Calgary।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानने लई आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

कैलगरीज इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue, Southeast Calgary, near Stampede

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
2: ताती वो न लग गई पार ब्रह्म शरण आई चौगिर्द हमारे राम का

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसीं अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हाल दा पता है, यूनिट नंबर 2850, होपवेल प्लेस, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: श्री दरबार साहब अमृतसर तो गुरबाणी कीर्तन दे सरवण ले आज ही अपनी आकारा ते करां दे रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम ते ट्यून करो। श्री दरबार साहब अमृतसर तो प्रसारित गुरबाणी कीर्तन हर रोज सवेरे 4 तो 8 बजे तक ते शाम 5 तो 6 बजे तक रिले कीते जांदे ने। पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम कैलगरी विच इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो है।
1: ज्यादा जानकारी लई कॉल कर सकते हो, फोन नंबर है 403-238-6060 या विजिट करो www

पिता माता तत् महत दिवस रात दोय दाई दाया खेले सग जगत चंगी आईया बुरे आईया वाचे धर्म हदू करमी अपो अपनी के नेड़े के दूर।

छुट्टी ना वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु साहिब जीओ, दर्शन प्यासी दिन सुरात, चितव अन दिन नी खोल कपट गुर में लिया। हाँ, नानक

जीवा गुर तेरा पूरन करम होए प्रभ मेरा हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिखखाई माया मोह परम पै पूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखों सुनाई एक ओंकार सतगुर प्रसाद

0: मस्त खुलिया
1: एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपाओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद असम हला पहला वार श्लोका नाम श्लोक भी महले पहले के लिखे कुंडे असराज कितनी श्लोक महला पहला बलहारी गुरे अपने देवहारी सदवा जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़ है हजार ते चानन होंदे आ गुरबिन घोर अंधार महला पहला
0: नानक गुरु ना चितनी मन अपने सुची छुटे तिल बुआड़ ज्यों सुंजाई अंदर खेत हितै अंदर छुटिया कौ नानक सोना फलिए फुलिए बपड़े ਪੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਪੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਜਿਓ ਆਪੀ ਲੈ ਰਚਿਓ ਨਾਮ ਉਦਰ ਸਜਿਐ ਕਰ ਆਸਣ ਪਿੱਠੂ ਚਾਉ ਤਤ ਤੁਰਤ ਆਪ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਹਿ ਕਹਿ ਪਸਾਉ ਜਣੋ ਸਭ ਸੈ

0: જીવન મુકતસ વાકીએ માર જીવે મરિયા જન નાનક સતગુર મેલ હર જગ દતર તરિયા
1: શ્લોક મહલા પહેલા सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फुरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुदा खै लख करोड़ सच्चा सब तान सच्चा सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची साला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच प्यायण सच जो मर जमे सो कच न कच महला पहला
0: बड़ी बड़ियाई जा बड़ा नाऊ बड़ी बड़ियाई जा सच ने आऊ बड़ी बड़ियाई जाने चल थाऊ बड़ी बड़ियाई जाने लाओ बड़ी बड़ियाई बुझस पाओ बड़ी बड़ियाई जा पुछन दात बड़ी बड़ियाई जा प्या नानकार नकथनी जा हिता करना सर्व जाय महला दूजा
1: जग सच्चा की है कोठड़ी सच्चे का विचवास एक ना हुक्म समाए ले एक ना हुक्मे करे विनाश एक ना पहाड़े कड ले एक ना माया विच निवास ए पे आख ना जा पई जे किसे अने रास नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे पर गास पौड़े नानक जी उपाय
0: लिखना वे धर्म बहाले उते सच सच न पड़े चुन वख कड़े ज जुमालिया थाम न पैन कूड़ियार महुकाल दो चक चल नर दिस जन गए हार गए सिठ गुण बालिया लिखना वे धर्म बहालिया धर्म बहालिया धर्म बहालिया हम मूर

0: करिया सबे गोपिया पहर कान गोपाल गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल तन वर्तन सब जंजाल नानक मोसै ज्ञान विहूनी खाए गया जमकाल महला पहला
1: वायन चिले नचन गौर पैर हलायन फिर सर उड़ रामा झट है पाए विखै लोक सह कर जाय रोटियां कारण पूरे ताल आप छड़े तरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपौ निरंकार सच नाम जागा किया सगल जहान सेवक सेवा क्रम चढ़ाओ पिनी रांझना मचाओ सिखी सिख्या गुर विचार नदरी क्रम लंगाए पार कोलू चरखा चक्की चक थल वारोले बहुत अनंत लाटू मधाणियां गा पंखी पौंदियां लैना सा सुवे चाड़ पवाइया जंत नानक पौंदिया गणत अनंत बंधन बंद पवाए सोए भया कृतन चै सब कोए नच नच हसै चली सी रोए उड़ना जाही सदना होए नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ी ना।

0: चोरा जा रहा कुड़ियारा खारा बाविकार एक होंडा खाए चले था उतना पेकाई कार जलथल जिया पुरिया लोआ आकार आया कार ओए जिया कैसो तू है जान है तिना पे तेरी सार नानक पत्ता पुत सलान सच नाम आधार सदा आनंद रह है दिन राती गुणवंतिया पछार महला पहला
1: मिट्टी मुसलमान की पीड़े पे कुम्यार कड़ पांडे इटा किया जल्दी करे पुकार जल जल रुवे बपड़ी चचड़ पव्यंग्यार नानक जिन कृते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किने अपायो बिन सतगुर किने न पाया सतगुर बच्चे आप रखियो कर प्रगट आख सुनाया सतगुर मिलिया सदा मुक्त है।

0: सुन सतगुरु बिने न पाया, सतगुरु विचार सुन कर प्रगट आख सुनाया, सतगुरु मिले सदा मुक्त है जिन मिचो मोह छुड़ाया, उत्तम में विचार जिन सच्चे सिउ जगलाया, जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।
1: कर कृपा वसो मेरे हृदय होय सहा।

0: हो मैं कर कर जंती पाया, हो मैं बुझे तां दर सूझे, ज्ञान में हूं ना कत कत लूझे, नानक हुक्मी लिखिए लेख, जेहा विक है तेहा विक महला दूजा,
1: हो मैं आजात हो मैं कर्म कमाए, हो मैं

ਪਾਇਆ।

ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਜ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ

कूड राजा कूड प्रजा कूड सब संसार, कूड मंडप कूड माड़ी कूड बैसनहार, कूड सोयना कूड रूपा कूड पहननहार, कूड काया कूड कपड़ कूड रूप अपार, कूड मिया कूड बीबी कप होए खार।

हर सर्व रो खंडन गुणकारी काम क्रोध मद मत सर तृष्णा बिन सजाहे हर नाम उच्चारी इशनान दान पापन सुच किरया चरण कमल हृदय प्रभतारी साजन।

गुण नाकी अमृत छाट बिख बिख खाई माया मोह परम पूले सुत दारा से प्रीत लग एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत

सो कहो टल गोर सेवियै अहिलेश सहज सोभाए दर्शन परसै गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफ तख समी नूर अर सह कुर सह चटिया तुद डठे सचे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटिया सजन सचा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोही सबना दा वेसा सजन सचा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोही सबना दा वेसा हो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी गुजरे महला पंजवा जिस मानुख पह करो बेनती सो अपने दुख भरिया पार ब्रह्म जिन हृदय आराध्या तिने पौ सागर तरिया जिस मानुख पह करो बेनती सो अपने दुख भरिया पार ब्रह्म जिन हृदय आराध्या

तत मान महत जस काटा रहा।

तेते ही कामनाया।

तिस संग मन बांछत फल पाया।

0: सिमरत नाम कोट जियारा बसत अगोचर सूजे फिरत फिरत तुमरा द्वार आया पंजन हर राया साधक चरण तोर जन बांछ सुख नानक एहो पाया फिरत फिरत तुमरा द्वार आया पंजन हर राया साधक चरण तोर जन बांछ सुख नानक एह पाया वाहिगुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। गुजरी महला पंजवा जिस मानुख पह करो बेनती सो अपने दुख भरिया पार ब्रह्म जिन हृदय अराध्या तिन भौ सागर तरिया
1: गुरपुर कृपा तारी

शाम कह सितंबर स्वामी सच मया छह साच रहे सबको सा समावे रिक कहे रहा परपूर राम नाम देवा मैसूर नाय लय प्राचित जाए नानक तो मुखंतर पाए जुज मैं जोर चली चंद्रावल कान कृष्ण जादम पया पार जात वो पी लाया इंद्रा बन में रंग किया कल में बेदू अथर बन हुआ नाओ खुदाई हल्लो पया नील बस्तर ले कपड़े पैरे तुरक पठानी अमल किया चारे बेद हो इस चार पड़े कुणे तुम चार विचार पाओ भगत करनी सदाई तो नानक मुखंतर पाए पौड़ी सतगुर बिटो बारिया जित मिले कसम संभालिया जन कर उपदेश बिन अंजन दिया इन ने तेरी जगत निहालिया कसम छोड़ तू जै डूबे सिवन जा रहा सतगुरु है बोएता।

कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही करते रह साचा नाम मेरा साच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाइया सदा कुर्बान किता गुर बिटो जिस दियां वडिआइया कह नानक सुनो संत।

0: अण सुनो बड पाप कियो सकल मनोरथ पूरे दुख रोग संता पुत्र सुनी सच्ची बाणी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे पर पूरे बलवंत नानक गुर चरण लाग वाचे अनहद तोरे।
1: बोलो जी वाहेगुरू। एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमरकै गोर नानक लई त्याए फिर अंगद गोर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद ना सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निधा वैताए सब थाई होए सहाए दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाए दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा त्या

जुग अटल, धर्म का जयकार।

पुस्तक संध्या बादं सिलपुच बगल समाधं मुखचूड़ विभूखण सारं प्रैपाल तिहाल विचारं गल माला तिलक ललाटं तो तोती बसर कपाटं जे जानस ब्रह्मं करमं सा फोकट निश्चो करमं को नानक निश्चो त्यावे वे सतगुर बाट न पावे पौड़ी कपड़ सुहावना।

0: नित नित होए खुआर सूचे न आखिया बैंज पिंड तो सूचे से नानका जिन मन बसिया सोए पड़ी तुरे पलाने पौन भी हर रंगी अरम सवारिया कोठी मंड माड़िया लाए बैठे कर पा सारे चीज कर मन पाम दे हर भुजन नहीं हारे कर मैं सफाया एक महलत हर नव सारे जरे आए जो बन हारे जो बन हारे जो बन हारे
1: ਜਰਾਈ ਜੋ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜਰਾਈ ਜੋ ਬਣਾ ਰਿਹਾ।

ਅੰਤਰ ਕੋ

आप हो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी, आप हो सिख सतगुरु।

बड़ी बड़ी हूँ बेटा पाप तेरा मर्तबा, रंग बिरंगा देखना जपन करतबा, जी अंदर जी सब तू जान ला, सब तेरा बस तेरा कर भला, तेरे करना तो बधाई तुझ कर, मन मत्ता ते जपन आप जर, सर्व कला पर दिस है जतकता, अर्ग दासन दास तो देहा के बिन बता, तेरा तेरा नाम सत है, वाहिगुरु।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd Avenue North ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज का पता है 3501 23rd Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होर जानकारी ले पॉल सेखू जी नो 403-829-5000 या फिर 403-719-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड का पता है यूनिट नंबर 11-2316 27 Avenue North East कैलगरी।
2: प्रोग्राम का यह हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन पैटियो डेक प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिवें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
3: वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की बाणी नाल मन बिरतियां जोड़ के बैठे हुए परम सन्मान योग गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनों, गरीब निवास जी की कृपा नाल सानू गुरबाणी नाल जुड़ बैठण दा सुभाग समा प्राप्त होया है। गुरु दरबार विच बैठ के सतगुरु जी दे उपदेश जो गुरु सवारियां ने गायन कीते हन असा सारियां ने बैठ के बड़े प्यार नाल इस सतगुरु जी दे पावन उपदेश नूं गुरबाणी नूं कीर्तन रूप विच श्रवण कीता है। जदों इस सतगुरु जी दी बाणी दा कीर्तन गाया जा रहा सी असां सतगुरु जी दे ए शब्द जिस प्यार नाल श्रवण कीते हन आओ उन्हां वल ध्यान देण दा जतन करिए कि सतगुरु जी दी ए गाई गई सुनी गई बाणी सानू की उपदेश की विचार देंदी है। जिवें कि गुरु तेग बहादुर साहब जी दा उच्चारण कीता होया शब्द जो सब तो पहला सत्कारयोग वीरां ने गायन कीता, सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी ने उस भटके हुए जां भरम विच भुलेखे विच पए हुए मनुख नूं संबोधन करके आखिया सी कि तू रब नूं बाहर किते लभण वास्ते ना जा, रब किते दूर नहीं है, रब किते वखरा नहीं बैठा होया कि तू उस नूं ए सारियां जिम्मेवारियां छड के गृहस्थी जीवन त्याग के ते तू उस नूं लभण वास्ते जा रहा है। कई तरह दियां समाधियां लगाएगा, कई तरह दे होर उल्टे सिद्धे कर्म करेगा ते आखेगा कि मैं रब नूं पा रहा हां, ये तेरा भुलेखा है। शब्द गुरु तेग बहादुर साहब जी दा असां श्रवण कीता सी, काहे रे बन खोजन जाई। बन दा अर्थ है जंगल, जंगलां विच कानू खोजन वास्ते जा रहे हैं, एकांत विच वखरे थां ते जाण दी लोड़ नहीं। काहे वे बन खोजन जाई सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई ओ तेरे नाल भी है। ओ सारिया थावां ते भी वसिया होया, ओ निरलेप अलग भी है इस मोह तों, इस माया तों अलग निरलेप भी है, उस नूं माया दी पा नहीं लगी हुई। पर तेरे नाल भी है, तेरे अंग संग भी है। फिर सतगुरु जी ने अगे होर प्यार दी उदाहरण दे के समझाया, पोह पमद ज्यो बास बसत है, मुकर माहे जैसे शाई। जिस तरह फुल विच सुगंधी है, हुण ओह फुल दी सुगंधी फड़ी नहीं जा सकती, महसूस कीती जा सकती है। जिवें शीशे दे सामने खलो के असी अपनी शकल देखदे हां, अपनी सूरत देखदे हां, हुण शकल दे विच असी अपनी शकल सूरत देख सकते हां, लेकिन उस शीशे विचली तस्वीर नूं पकड़ नहीं सकते। ते सतगुरु आखदे पोह पमद ज्यो पास बसत है, मुकर माहे जैसे शाई, तैसे ही हर बसै निरंतर, घट ही खोजो भाई। हे भाई, उस नूं अपने हिरदे विच ही लभो, तुहाडे हिरदे विच बैठा होया ओ सच, ओ गुण, ओ सारा सतगुरु दा ज्ञान उपदेश तुहाडे हिरदे विच है। उस नूं हिरदे विचों लभण दी कोशिश करिए, अपने आप नूं खोजण दी कोशिश करिए। सतगुरु गुरु अमरदास जी दा अज दा ए मुबारक जो विचार जो असीं सांझा करन जा रहे हां, सतगुरु गरीब नवाज भी सानू इसे तरह ही प्यार दा उपदेश अज दे इस विचार विच दे के ते आखदे हन, हे मेरे परमेश्वर, तू अपहुंच है, तेरे तक पहुंचना साडे वस दी गल नहीं, साडे इंद्रे बहुत छोटे हन, ए रसा कसा विच लगे रहिंदे हन। अगम अगम दा अर्थ है जो पहुंच तो परे है, गम गम दा अर्थ है पहुंच, अगम दा अर्थ है जिस तक पहुंच ना हो सके। अगोचरा गोचरा भाव जो इंद्रियां दी पकड़ विच आ सके, अखां दे, कान दे, नक दे, जुबान दे, ए चमड़ी दे, भाव जेड़ा साडे अपने स्पर्श विच, साडे अपने हाथ विच, साडी पकड़ विच आ सके। सतगुरु आखदे नहीं, अगोचर है ओ। अगोचर दा अर्थ है जेड़ा साडे ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां दी पकड़ विच नहीं आउंदा, ओ साडे तो दूर है, बहुत उच्चा है, वड्डा है, समर्थ है। हुण ए नहीं कि वाहिगुरु अकाल पुरख जी साडे तो कोई वख हन। सतगुरु जी जेड़ी गल समझाउण दा जतन करदे, गरीब नवाज आखदे तेरा अंत ना पाया, हे अपहुंच वड्डे समर्थ मालिक जी, कदी तेरा किसे ने अंत नहीं पाया। सच जानना, जदों सतगुरु गुरु नानक साहब जी दी विचारधारा नूं पढ़दे आं, गुरबाणी नूं पढ़दे आं, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने जो बाणी दे विच बहुत सारे लोकां दे विचार जिहड़े उहनां नाल सांझे कीते, जां सतगुरु जी ने अपना प्यारा उपदेश दित्ता, ओह बाणी विच वी दर्ज कीता। इतिहास नूं पढ़दे आं तां इतिहास विचों जां बाकी होर धर्मां नूं पढ़िआं ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਪੈਰ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆਏਗਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਹੱਥ ਵਿਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਵਾਂਗੇ ਰੱਬ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਖਦੇ ਹੈ ਰੱਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਅਥਾਹ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਰੱਬ ਜੀ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਰਹਿਰਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵੜ ਜੀਰਾ। ਫਿਰ ਰਹਿਰਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ, ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ, ਬਹੁਤ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। बहुत कुछ किया गया। कहण नूं तां इह वी कह दिता गया कि रब धरती ते पैदा हो गया है, रब धरती ते किते खेड रहा है, रब धरती ते जम के किते ना किते सौ रहा है, रब धरती ते पैदा होके किते कलोलां कर रहा। बहुत सारिया कहानियां साडे समाज विच इस तरह दियां प्रचलित कर दित्तियां गईयां। पर जदों गुरु नानक साहब ने सानू रब जी बारे विचार दिते ते गरीब नवाज ने बड़े प्यार नाल सानू समझा दिता, नहीं इस तरह का भुलेखा असा मन विच नहीं रखना। रब जी नूं कदी भी इस तरह की वस्तु जां इस तरह का पदार्थ समझ के असा नहीं वेखना। हुण जिन्हां ने इस तरह के ख्याल प्रगट किए रब नूं फड़िया जा सकता है, रब नूं मैं देख लिया है। अज भी साडे आले दुआले विच बहुत सारे लोग ऐसे प्रगट होए ने, ऐसे वो लगातार साडे आले दुआले गिरफ्त वधा रहे ने, जेड़े किसे तरीके नाल पुठियां सिधियां समाधियां लगा के जां पुठे सिद्धे होर बहुत सारे तरीके वरत के कोई अखां दब के रब विखा रहा है, कोई किसे तरीके कोई नक घुट के रब विखा रहा है, कोई कहिंदा इत्थे ध्यान करो तां रब जी दे दर्शन हो जाए। बहुत सारिया ऐसिया गल्लां साडे समाज विच अज भी आले दुआले विच प्रचलित हैं। पर गरीब नवाज सतगुरु तां इह बख्शिश करदे है कि भाई रब तां अपहुंच है, बहुत वड्डा है। मेरे लाल जीओ तेरा अंत ना जाना, तू जल थल महियल भर पुर लीना, तू आपे सर्ब समण। तू तो सारिया थावां ते समाया होया, तेरा अंत नहीं पाया जा सकता। मैं बेनती कर रहा सां रब जी दा अंत पौना तो एक पासे रहा, रब जी दी पैदा कीती हुई इस सृष्टि दा भी कोई अंत नहीं पाया जा सकता। वाहिगुरु अकाल पुरख जी जिन्ने आप बेअंत हन, ओनी ही ए बेअंत ओना भी सृष्टि है। रहिरास दी बाणी दा असीं पहलां भी शब्द विचार विच लिया चुके हां, कोई ना जाने तेरा केता केवड चीरा। चीरा दा अर्थ है पसारा, ए पसारा किन्ना को वड्डा है कोई जान नहीं सकदा। सतगुरु गुरु गरीब नवाज जी ने जपजी बाणी विच भी इस तरह के ख्यालां वालियां नूं संबोधन होके गरीब नवाज ने जिथे समझाउण दा यतन कीता, उथे सतगुरु गरीब नवाज जी ने सानू भी सदा वास्ते इह सेध बख्श दित्ती। इह ज्ञान सतगुरु ने बाणी राही दे दिता कि भाई असा भी इस तरह के भुलेखे विच नहीं पैणा, असा तां रब जी दे गुण गुरबाणी दे राही समझ के अपने जीवन विच धारण करने हन। रब जी दे गुणा दे मुताबिक असां अपनी जिंदगी नूं जिउणा है, ना कि उहदा अंत पौण तुरना है। रब किन्ना वड्डा है, रब कित्थों शुरू होया, कित्थे समाप्त होएगा, इह धरती कदों पैदा होई, किवें पैदा होई, इह किवें समाप्त होएगी, असां इहदे विचों की लैणा। सतगुरु आखदे तूं इस धरती ते आया आ, धरती ते आ के तेरा अपना जीवन मनोरथ की होना चाहिदा, किवें दा होना चाहिदा, ए समाज किवें दा होना चाहिदा, साडा भाईचारक आपसी सांझ किवें होनी चाहिदी, तैनू तां इह सिखना चाहिदा है। हुण जिन्हां ने इह अंदाजे भी लगाए, सतगुरु ने जप बाणी अंदर भी फैसला दे दिता, वेल ना पाईआ पंडती जे होवै लेख पुराण। जे कोई अंत पाउण दी गल करदा आ, मैं रब जी नूं वेख लिया है, मैं रब जी दा अंत पा लिया है, जां रब जी दी रची होई सृष्टि दे मैं जीव जंत ते होर सारे दी गिणती कर लई, इन्ना ही है। सतगुरु आखदे नहीं, जे इह किते समें दा पता लग जांदा, जे इह सारा ज्ञान इन्हां मनुखां कोल पैदा हो जांदा, इन्हां दी समझ विच आ जांदा, तां फिर जिस तरह 18 पुराण लिखे गए, 18 पुराणा दे नाल एक पुराण इस धरती दी रचना बारे, सृष्टि रचना बारे पंडतां ने होर लिख देना सी, पर नहीं पता लग्या। वेल ना पाईआ पंडती जे होवै लेख पुराण, वक्त ना पायो कादियां जे लिखन लेख कुराण। जे काजियां नूं इस गल दा पता लग जांदा सृष्टि रचना किवें होई, इह किन्नी वड्डी है, जे इहनां दी समझ विच इह गल आ सकदी ते कुरान वर्गी इक पवित्र ग्रंथ किताब इक होर इहनां ने लिख देनी सी, पर इहनां दी समझ विच भी इह गल नहीं आई। वक्त ना पायो कादियां जे लिखन लेख कुरान, थित वार ना जोगी जाने, रुत माहा ना कोई, जा करता सिरठी कौ साजे, आपे जाने सोई। जो सृष्टि नूं साजन वाला है वो आप ही जानदा है, उन्हें पसारा किवें रचिया, यह पसारा किन्ना वड्डा रचिया, यह सारा पसारा रच के इहनूं संभाल किवें रहा है, इहदी देख रेख किवें कर रहा है, इहदे बारे वो आप ही करता जानदा है। तो मैं बेनती कर रहा सा सतगुरु गरीब नवाज जी की बाणी सानू इस तरह का ज्ञान बख्श के समझाउंदी है गरीब नवाज सतगुरु की बाणी कि असा कदी भी ए अंत पाउण वाले पासे नू नहीं तुरना जेड़े दावे बनते हैं जेड़े लगातार इस तरह का विचार रखते हैं और आप भरम विच पै के दूजियां नू भरम विच पाउण दा जतन करते हैं कि रब तो मेरी मुठी विच है तुसी मैनू मत्था टेको मेरे मगर लग जाओ मेरी गल मन लो रब मैं तुहानू भी दिखा देंगा। सतगुरु गरीब नवाज ने बाणी दे विच बड़े सुंदर शब्दां च ए वी गल सानू समझा दित्ती जे को आखै बोल विगाड़। बोल विगाड़ दा अर्थ है जे कोई विंगे टेढ़े आपू अंदाजे लगा के ऐवें भरम पैदा करन दा जतन कर रहा है कि मैं रब नू देख लिया रब इन्ना वड्डा है सृष्टि इन्नी वड्डी है इहदे च इन्ने जीव जंतु पैदा होए हन। जे कोई ए अपने कोलों गलत अंदाजे लगा के विगाड़ के बोल बोल रहा है ता लिखी है सिर गावारा गावार ओ मूर्खा सिर वड्डा मूर्ख है। हुण असां तां केवल सतगुरु जी दी बाणी तों इन्ना क समझना है कि जो वाहेगुरु अकाल पुरख जी दे गुण सतगुरु जी ने सानू बाणी च दर्शाए हन असां तां उन्हां गुणा नू अपने जीवन विच लै के ओहदे मुताबिक जिंदगी जिउण दा जतन करना है। हुण सतगुरु जी ने गुरबाणी च किते भी ये दावा नहीं बनिया। सतगुरु जी ने समर्थ हुंदिया होया वाहेगुरु अकाल पुरख जी नाल एकमेक हुंदिया होया किसे एक भी थां ते ए दावा नहीं बनिया ना भगत साहिबान ने ए किते दावा बनिया कि रब जी नूं असां देख लिया है ओहदा अंत पा लिया है। अंत पाउण वाले पासे नूं तुरना लगातार राह तों कुराए जाण वाली गल है। अंत नहीं पाया जा सकदा सगों धर्म की इस अगवाई विच रहिंदिया होया गुणा वाली जिंदगी ही बतीत कीती जा सकती है। जे असी अंत पाउण वाले पासे तुर पईए ते सतगुरु गरीब नवाज जी दी बाणी अंदर धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दा पावन उपदेश है। सतगुरु ने इथो तक भी कहता कोट कोटी मेरी आरजा पावन पियन अपियाओ चंद सूरज दोए गुफा ना देखा सुपने सौण ना थाओ ਧੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ ਹੋ ਕੇ ਵੜੇ ਆਖਾ ਨਾ ਹੋ। ਤੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤੇ ਅਬ ਤੋ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਣੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ ਰੱਬ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਰੱਬ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਨ ਕਿੰਨੇ ਬੇਅੰਤ ਹਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਭੰਡਾਰਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਰੱਬ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਫੇਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਬੀਰ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰ ਮਸ ਕਰੋ ਕਲਮ ਕਰੋ ਬਨਰਾਏ ਬਸਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਜੋ ਕਰੋ ਹਰ ਜਸ ਲਿਖਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਏ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਵਡਿਆਈ ਉਹਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਖਦੇ ਹੈ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਅੰਤੋ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੇ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੋਂ ਜਾਣੇ। ਹੇ ਮੇਰ ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭੰਡਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਰਚੀ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੋਂ ਜਾਣੇ जी जंत सब खेल तेरा क्या को आख विखाने। ए सारी सृष्टि ए जीव जंत सारे तेरे पैदा किते हुए है, इन्हां दे बारे भी कोई की विचार दे सकदा है किन्ने पैदा किते है कदों पैदा किते है। हालांकि बहुत सारे अंदाजे साडे सामने बहुत सारे लोगों ने लगा के रख दिते, पर जो अंदाजा एक बारी लगा के साडे सामने रखिया गया उस तो बाद दूजे खोजकर्ता ने उसनु रद्द करके अपना सामने ले आंदा। कोई भी आज तक फाइनल विचार साडे सामने नहीं आ सकिया कि ए सारा सिलसिला वाहेगुरु अकाल पुरख जी का जो रचिया होया ए किवें रचिया होया कदों रचिया गया इस रचन का कारण की है। ए सारा कुछ भावे अंदाजे आपो अपने ला रहे ने आपो अपने विचार सारे रख रहे ने, पर सतगुरु गरीब नवाज आखदे कोई अंत पा लेना इहदे बारे फाइनल विचार दे देना कि हां एहो ही इन्ना ही है। ए साडे वस दी गल नहीं, जे साडे वस दी गल नहीं जे साडी समझ विच साडी पकड़ विच आ ही नहीं सकदा तां फिर सानू इस भरम विच जां इस चक्कर व्यू विच फसण दी की लोड़ है। सानू तां केवल फिर एहो ही ध्यान रखना चाहीदा है, एहो ही गाउणा चाहीदा है, एहो ही सतगुरु दी बाणी दा ज्ञान अपने जीवन विच लै लेना चाहीदा है। बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाई लखिया मेरे मालिक जी, बलिहार जावां सदके जावां तुहाडी इस कुदरत दे जिस कुदरत विच तुसी आप वसे होए हो कुदरत दे कौतक समझ तो परे हन साडी पकड़ तो परे हन। ए सारा कुछ समझ विच तां नहीं आउंदा लखिया तां नहीं जा सकदा, पर असी बलिहार जरूर जाने हां। सतगुरु जी कृपा कर सानू इस कुदरत दे नजारिया तो अपनी जिंदगी विच आनंद लैण दा सुभाग जो प्राप्त लगातार हुंदा रहिंदा है। अनेकां ही कौतक सृष्टि दे जो सतगुरु दी बाणी ने भी सानू समझाए उन्हां सारे कौतकां तो बलिहार जांदियां उन्हां नूं अपनी जिंदगी दे विच वाचदियां समझदियां असां तां सतगुरु दी बाणी दे राही ओ सुचज्जा ते सोहणा जीवन बतीत करन दा जतन करना है। तां ही सतगुरु गरीब नवाज सानू पावन बाणी दे राही ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਚ ਪੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਧੀ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਉਹੀ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਰੱਬ ਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮਨ ਵਿਚ ਪਾਲ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਗਤ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਗਤ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਦੀ ਰਜਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਇਕ ਐਸਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਜਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਇਹ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਰੱਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਭਗਤ ਜਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਬੋਲ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਆਖਦੇ ਆ ਉਲਾਹਨੋ ਮੈਂ ਕਾਹੂ ਨਾ ਦੀਓ ਮਨ ਮੀਠ ਤੁਹਾਰੋ ਕੀਓ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਝੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੇਰੀ ਰਜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬਨ ਵਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਸਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਖੇ ਤਾਂ ਵੇਖੇ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ ਜਿਨ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਜੀ, ਹੇ ਅਗਾਮਾ ਗੋਚਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਦਾ ਤੁਸਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਜੋ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਥੋੜਾ ਲਾਈਏ, ਗਲਤ ਲਾਈਏ, ਇਹ ਫੱਬਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ

0: सत्य साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैंड लई तुसी आज ही निर्वैर जोहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जोहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6 स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300 और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फिश या स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 त्रेंट एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ कैलगरी। प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दी रूफिंग साइटिंग स्टुको सॉफ्ट फेशिया स्मार्ट ट्रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों गैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयरडील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट गैलगरी। गैलगरी दे इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो ते आओ हुण सरवण करिए गुरमत विचार भाई पिंदरपाल सिंह जी दी रसना तों।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
2: प्रोग्राम का ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लेने लई कॉल करो 403-719-4300, 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंकुएट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue North ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर केटरिंग स्मॉल बर्थडे पार्टीज अति होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा दवाई देना अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

0: ویسے ہون او دے سب متر تے رشتے دار بن دے نے ڈگے تکے ہوئے نیمے گرے نوں کوئی نہیں چتلا ایک بابا نانک تو اے جنے چڑھدیاں ول پانی دینا چھڈ کے لیندیاں نوں اپنے گل نوں
1: پروگرام دا اے حصہ تواڈے تک پنجاب انشورنس دے ہرپندر سنگھ سدھو دے سہیوگ نال پہنچایا جا رہا ہے इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नू 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होर जानकारी लई पॉल सेखू जी नूं 403-829-5000 जां फिर 403-719-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316-27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लेन लई तुसी आज ही निर्वैर जौहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जा फिर भजन सिंह जौहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लेन लई तुसी तारा कैसिडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
0: धन श्री गुरु नानक साहब महाराज जेड़े नगर विच पातशाह दा प्रकाश होया ओदा नाम लिखिया राय भोएं दी तलवंडी। एदा अर्थ सुने राय भोएं पट्टियां दा एक सरदार है। उन्हां दा गोत पट्टी होए जेड़ा राय भोएं पट्टी सरदार दे हिस्से विच जमीन आई उत्थे उन्हें एक पिंड वसाया। तलवंडी दा अर्थ तल कहिंदे ने जमीन नू, वंडी कहिंदे ने जेड़ी किसे दे हिस्से विच आई। पट्टियां दे सरदार राय भोएं दे हिस्से विच जेड़ी जमीन आई उत्थे उन्हें एक पिंड वसाया। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੇਖਿਓ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤਲਵੰਡੀ ਹੋਏਗਾ ਕੱਲੀ ਤਲਵੰਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਲ ਭਾਵ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਲਵੰਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਲਵੰਡੀ ਸਭ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦਸੌਂਦਾ ਸਿੰਘ, ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਮਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਲਵੰਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਮ। ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਭ। ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਲ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਭੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ। ਉਸ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਬੇਦੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ

0: सतगुरु कृपा करन गुर संगत बाणी बिना दूजी ओट नहीं है राई। बाणी दा आसरा लाओ, संगत दी ओट लाओ, बाणी निरंकार है, बिल्कुल भरमा च पैण दी लोड़ नहीं। पाठ करवाउण दा की फायदा, की फायदा यूट्यूब गूगल ते ना वासु भारद्वाज विज्ञानी भर के वेख लियो, तुहानू पता लग जू पाठ करवाउण दा की। सतगुरु दी बाणी नाल जुड़ो, ये जीवन सफल होवे। फतेह बुलाओ जी, वाहिगुरु जी का खालसा
1: गैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हॉल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: सत्य साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।

0: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ M&R ਰੂਫਿੰਗ ਐਂਡ ਸਾਈਟਿੰਗ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਫਿੰਗ, ਸਾਈਡਿੰਗ, ਸਟੁਕੋ, ਸੋਫਟ ਫਿਸ਼ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਰਿਮ, ਫਲੈਟ ਰੂਫ ਅਤੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਣਜੀਤ ਵਿਰਕ ਜੀ ਨੂੰ 403-903-0483 ਯਾਨੀ 403-903-0483 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। M&R Roofing and Siding Limited।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

प्रोग्राम का ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लेने लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो Bobby Dodd @403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-453-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, Northeast Calgary।

परथाए साखी महापुरुख बोल दे सांझी सगल जहाना।

परथाए साखी महापुरुख बोल दे सांझी सगल जहाना।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजार्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111 एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी उर्दू मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।
0: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 एफएम इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

0: राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
1: देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई बच्चा उत्पन्न करना चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के दसवें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी एक बेटा उत्पन्न हो गया। 102 पृष्ठ पर गणा नहीं पड़ा, हम इतना बताते हैं। शिव ने कहा वत्स, जो बच्चा उत्पन्न हुआ उसको कहा बेटा। काल ने कहा काल ने, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ, यानी सिद्ध हो गया कि विष्णु जी का पिता शिव युक्त सदाशिव काल रूपी ब्रह्म। जैसा यहां देखिएगा, ये 101 पृष्ठ पर है कि उस काल रूपी ब्रह्म ने, वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं, उन काल रूपी ब्रह्म ने, ये काल रूपी ब्रह्म है विष्णु जी का पिता और यह प्रकृति दुर्गा है इनकी माँ। ठीक हुआ, अब शिव ने उसका नाम धर दिया विष्णु। ये तो हो गया विष्णु उत्पन्न हुआ दुर्गा और काल से। अब यहाँ ये छठा अध्याय समाप्त हुआ। सातवें में ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर साम सदाशिव ने पूर्वोत्पन्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया, यानी जिस तरह विष्णु की उत्पत्ति हुई फिर मेरी उत्पत्ति दुर्गा से हुई और काल के संयोग से। उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि में डाल दिया और लीला पूर्वक वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा क्या कार्य है, बता। मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। अपना आत्मा अब देखिएगा अध्याय नंबर 9 में और प्रश्न नंबर 110 पे संक्षिप्त शिवपुराण रुद्र संहिता और ये लास्ट में। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीन देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। अब यहां चार हो गए, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र तीन, और इनसे न्यारा जो है वो शिव, ये गुणातीत माने गए। इन तीनों मत गुण है, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु स्तमगुण शिव शंकर, और ये काल भी शिव रूप विष्णु रूप ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है। तो शिव पुराण में जिसने शिव रूप में दर्शन करे उस व्यक्ति ने शिव पुराण की रचना की, तो इसको हीरो बना लिया शिव को, सदा शिव काल को। अब यहां ये अनुवाद करता पीछे तो असमंजस में पड़ गया कि विष्णु शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, लेकिन यह नहीं छुप पाई इनसे, इन तीनों से अलग है। फिर यह एक समस्या उत्पन्न हुई, कहने लगे तो रुद्र के बारे में कहा है, शंकर के बारे में नहीं। ये समस्या हल होगी, अभी दिखाते हैं 24-25-26 पे। एक बार ब्रह्मा और विष्णु की आपस में लड़ाई होगी, वो कह मैं तेरा बाप, वो कह मैं तेरा बाप, दोनों लड़ पड़े। ये देखिएगा विद्वेश्वर संहिता संक्षिप्त शिवपुराण ये 24 पृष्ठ पे। जब ये दोनों का झगड़ा हो गया विष्णु और ब्रह्मा जी का, तो बीच में एक स्तंभ खड़ा कर दिया काल में, तेजो में स्तंभ पिलर, तो ये दोनों की लड़ाई बंद होगी। फिर वो स्वयं आकर प्रकट हो गया, ये 25 पृष्ठ पे। यहां से देखेंगे हम, ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, जब ये काल आकर खड़ा हो गया तो दोनों ने आपस में चर्चा की इस काल के साथ। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो सृष्टि आदि पांच कर्तव्यों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। तो भगवान शिव बोले, युग काल बोला, आगे ज्यादा ना बताऊं, यहां लेते हैं, अब 26 पृष्ठ पर आ जाते हैं। ये काल बोलता है, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक दो कृत प्राप्त किए हैं। विष्णु और ब्रह्मा तो यहां तक हो गए, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप, मेरे जैसे ही आकार के, मेरे जैसे ही वेशभूषा वाले रुद्र और महेश्वर ने दो अन्य उत्तम कृत्य संहार और त्रोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कृत्यों कर्म को भूले नहीं, इसलिए मैंने इनके लिए उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। अब ये दो तबन मां विष्णु महेश हो गए, और दो ये हो गए रुद्र और महेश, चार हो गए, और पांचवा ये बोल रहा है यो काल है। हमने यही सिद्ध करना था। यहां देखिए, मैंने इनके बारे में बता रहा है कि रुद्र और महेश तो मेरे जैसे ही हैं, इन मेरे जैसे ही ये वाहन रखते हैं, मेरे जैसे ही इनके पास हथियार हैं, वे रूप वेश वेशभूषा कृत्य वाहन और आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। अब ये क्या बताता है, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है, वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोध करने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर श्रवण करने से मेरा ही सदा श्रवण होता है, ब्रह्म का। मेरी उत्तरवर्ती मुख से अकार, पश्चिमी मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार का और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। ये पांच अकार मकार और अकार का और इस उकार मकार बिंदु और ये नाद, इन पांचों से मिलकर ये एक ओम मंत्र हुआ। इस प्रकार पांच अवयवों से वो युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अयों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नाम एक अक्षर हो गया। अपने आत्माओं, इससे फिर गीता जी का लिंक जुड़ेगा। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है, गीता ज्ञान दाता ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके काल बोल रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। तो यहां भी ये कह रहा है कि ओ मेरा एक अक्षर ओम है, और इसने देख नीचे नाड़ी ने क्या लिख दिया, वह आकार रहित अकार आदि मकर कर्म से और मकार आदि कर्म से कर्म से प्रकाश माया। ओम नमः शिवाय शिवाय यह पंच अक्षर मंत्र है। ओम नमः शिवाय में ये अकार मकार नोगे पांच से, और जबकि स्पष्ट कर रहा है कि इस प्रणव मंत्र में, इस ओंकार में ही पांच है। ये उत्तरवर्ती मुख से अकार, दक्षिण मुख से, पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण से मकार और पूर्ववर्ती से बिंदु, मध्यवर्ती से नाद, ये पांच पांच अयों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अयों से एकीभूत होकर यह प्रणव मंत्र ओम नामक एक अक्षर हो गया। और ये ओम नमः शिवाय इसने लिखा भी अलग भाषा में है, ये राइटिंग में, ये मूल संस्कृत में नहीं है, ये मन गढ़ंत है। लोक वेद अनुवादकर्ता ने हिंदी वाली में फंसा दिया, लेकिन संस्कृत मूल भाषा में ऐसा नहीं है ये। तो अब हमने ये मंत्र मान लिया, ओम भी छोड़ दिया, ओम नमः शिवाय, तो ओम भी माए आ गया, इसके नहीं सोच लिया हमने ओम नमः शिवाय, इसकी लाजी रटना। अब इससे ये सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पूज्य पिताजी ये काल रूपी ब्रह्म है, जिसको सदा शिव भी कहते हैं। ये अपने आत्माओं प्रसंग चल रहा है, आग गए ना बावड़े रहते भी सब जां, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना ना। अब तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ये नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा इनकी माता है और काल इनका पिता है। और इस काल का विधान है कि यहां कोई भी जीव स्थाई नहीं है। अब क्या बताया है कि बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी लेकिन उसका लंबा चौड़ी बहुत बड़ी आयु है। कैसे है? एक चतुर्युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में 43,20,000 वर्ष होते हैं हमारे मनुष्यों के। और ऐसे ऐसे चतुर्युग के 1,000 चतुर्युग का ब्रह्मा का दिन, 1,000 चतुर्युग की रात हम सीधा लेते, वैसे तो 1,008 होते हैं। इस प्रकार 30 दिन रात का बना हुआ एक महीना हो गया ब्रह्मा जी का, 12 महीनों का एक वर्ष हो गया। इस प्रकार 100 वर्ष बने जो, इतनी आयु होगी ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की ब्रह्मा जी से 7 गुना, और विष्णु जी से 7 गुना अधिक आयु है शंकर भगवान की। ये तीनों मरेंगे। उसके बाद 70,000 बार जब ये शिव मर लेंगे, शंकर मर लेंगे, तमोगुण शंकर मर लेगा, काल का पुत्र, इसकी 70,000 बार ऐसे इनकी मृत्यु हो लेगी। इतने ये 84,00,000 योनियों में जा चुके होंगे और नए पुण्य आत्माओं को काल अब पत्नी दुर्गा से उत्पन्न करके ऐसे इन पोस्टों पर विराजमान करता रहता है। तो तब एक काल की मृत्यु होगी। गीताजी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये काल भगवान कहता है, ब्रह्म कहता है, गीता बोलता हुआ श्री कृष्ण में प्रवेश करके, कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। मेरा जन्म और मृत्यु जो होता है वो अलौकिक है। कैसे? ये काल जब मरता है 70,000 बार त्रिलोकीय शिव यानी तमोगुण शिव मर लेंगे तब, तो यू एक युग होता है उस अक्षर पुरुष का, परब्रह्म का, जो 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी। ऐसे ही फिर 1,000 युग का दिन, 1,000 युग की रात, 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का एक वर्ष, ऐसे 100 वर्ष की आयु अक्षर पुरुष की, परब्रह्म की, 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है। ये ब्रह्म जो है काल, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। इसको सर पुरुष कहते हैं और इस परब्रह्म को अक्षर पुरुष कहते हैं। श्रीमद भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17 में इन तीनों का विशेष वर्णन है, परम अक्षर ब्रह्म का और इस सर पुरुष और अक्षर पुरुष का। तो ये भी मरेगा। अब ये काल कहता है कि मेरा जन्म और कर्म अलौकिक है। कैसे है? कि ये यहां मर जाता है जब 70,000 बार ये त्रिलोकीय शिव जो वर्तमान बैठे हैं, यो ब्रह्मा मरेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पूरे हो लिए, 50 और रहते हैं तो वो भी पूरे होंगे, यूं मरेगा। उसके बाद ऐसे 7 और ब्रह्मा बैठा दिए जाएंगे, फिर विष्णु मरेगा, फिर 7 विष्णु ऐसे मर लेंगे, साथ में ब्रह्मा भी मरते रहेंगे, फिर एक शिव मरेगा, यो शंकर मरेगा, काल का पुत्र। और जब 70,000 बार ये प्रक्रिया होलेगी तब एक काल मरेगा ब्रह्मलोक में, उसके बाद एक ब्रह्मांड का विनाश होगा और ये सभी प्राणी ऑटोमेटिकली परमात्मा परमेश्वर की कृपा से दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे। ये दुर्गा भी मरेगी, काल भी मरेगा और वहां चले जाएंगे। वहां जाकर ब्रह्म और दुर्गा का युवा शरीर ऑटोमेटिकली बन जाएगा उस कबीर परमेश्वर के द्वारा बनाए गए, दिए गए वरदान के आधार। तो ये कहता है कि मेरे जन्म और कर्म आप जैसे नहीं है, मृत्यु तो होती है लेकिन मेरी कुछ और प्रोसीजर है जो तुम नहीं जान सकते। तो कबीर परमात्मा ने आके बताया ये तरीका। जैसे यहाँ कई बहनों के अंदर, भक्तों के अंदर कोई तो कहेगा मैं भैरव हूं, भैरव, और कोई भूत जो कहेगा मैं दुर्गा हूं, काली हूं, अनुजी बुकड है, इसका दो धरे धड़ा फिर सिद्धि हो जाए, दुर्गा भी वाज्या और भैरव भी जाता रहे। जैसे कोई सरपंच ना रहे और बाद में भी उसने सरपंच साहब कहा करे, राजी रहा रहेगा, और वो अपने आप ने भी कोई ने पूछ रहा कौन सा था, सरपंच था, जबकि वो सरपंच है नहीं, फिर भी क्योंकि और उसे सरपंच कहने लग गए, वो एक नाम सा पक गया। तो ऐसे ही ये मृत्यु के उपरांत जो ब्रह्मा विष्णु और शिव जो मर जाते हैं, उसके बाद फिर ये किसी में प्रवेश करके, क्योंकि पितर रूप धारण कर लेते हैं, इनमें फिर भी कुछ पुण्य शेष रह जाते हैं, और फिर उसी में एक दूसरा भूत और आ जाता है। वो कहता अहम शिवहम शिवहम शिवहम, मैं शिव हूं मैं शिव हूं। वो कहता शिव की पद पर रहा होगा पहले, वो मर गए भूत बन गया। तो पुण्यात्माओं, उन भूतों ने यह पूरा बखेड़ा कर रखा है, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना न। जैसे कोई सत भक्ति भी मान ले या ब्रह्म तकी करते हैं, कोई विष्णु जी की पूजा करते हैं, मान लीजिए बड़ी बात, तो विष्णु लोक में गए, वहां एक अलग से एक रेस्टोरेंट है, वहां अलग से स्वर्ग बना हुआ प्रत्येक लोक में, जैसे शिव के लोक में, विष्णु जी के लोक में, ब्रह्मा जी के लोक में, दुर्गा जी के लोक में, एक कॉमन स्वर्ग है, फिर इंद्र के लोक में, फिर ब्रह्म लोक में भी। तो जो भी जहां की साधना करता है अपने पुण्यों को वहां समाप्त करके, वो तुरंत ही वापस आ जाता है, फिर नरक जाता है 84 लाख योनियों में, धक्के खाता है, भटकता है। जैसे ब्रह्म लोक में चला गया तो वहां हजारों युगों तक अपने पुण्य आधार पर, जितना जिसकी पुण्य है, भक्ति है, उसका आधार से ब्रह्म लोक में रहेगा, वहां समाप्त करके अपने पुण्यों को फिर नरक जाएगा, नरक के बाद फिर यही फिर धक्के खाओगा। अब जैसे कोई पुण्य आत्मा है आज, और अच्छी पोस्ट है या बढ़िया व्यवसाय है, और वो न सोच रहा है मैं यहीं डटा रहूंगा, मेरी मृत्यु ना हो, क्योंकि उसको याद भी कोई ना यह बात, और मृत्यु एक सेकंड में हो जाती है, वो सारी उम्र में जो इकट्ठा किया था वो यही रह गया। परमात्मा ने बताया है, परमेश्वर ने उदाहरण दिए हैं कि जो सत्संग में नहीं आते और परमात्मा से परिचित नहीं होते, वह गोबर के भूंड है। गोबर का भूंड आपने देखा होगा, खेतों में पशु गोबर कर देते हैं, और भूंड होते हैं काले काले, उड़ते भी हैं, थोड़ी पंक्षी भी व्याकरण के, और वो क्या करते हैं, उस गोबर के गरोड़े बना लेते हैं गोड़ी सी, और उसने सटोक करते हैं जल में ले जाकर गोबर ने, है, और सारी रात और सारी दिन इतने वो गोबर खत्म ना हो ले, वो लागे रहा करें, ढोहे जाएंगे, इतने बेईमान हो जाते हैं, कहीं ये गोबर फिर मिल रहा है कोई ना। और वो गोबर ढोते ढोते गोली बनाते लाके लाते लाते को पशु के पैर के नीचे आकर वो दोनों मर जाते हैं, और वो गोबर उड़ा इकट्ठा करा करा रह जाता है बिल में। तो जो प्राणी परमात्मा से परिचित नहीं है और इस माया रूपी गोबर ने जोड़न में दिन रात लगे रहते हैं, और वो जोड़ा जाड़ा गोबर का तो बैंक में रह जाएगा, है, या किसी तो दे रखेगा वो बढ़कर देना। परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़ुआ लागे, राम नाम कड़ुआ लागे, ये मीठे लागे दामे, द्विधा में दोनों गए भाई माया मिली ना राम। एक बार ये दास पंजाब में तलवंडी भाई, एक छोटा सा कस्बा है बरवाले जैसा, वहां मेरे पूज्य गुरुदेव जी का आश्रम, ज्यादातर वो वहीं रहते थे, वहां कुछ श्रद्धालु अच्छे थे, वैसे तो उनके कई आश्रम थे, मोगा में थे, नजबगढ़ में था, एक खन्ना के अंदर भी था, और तलवंडी भाई, तो ज्यादा तलवंडी भाई रहते थे। उनके सतलोक गमन के बाद इस दास जी को आदेश दे गए थे वह नाम दीक्षा देने का, इस दास के अतिरिक्त उन्होंने किसी को आदेश नहीं दिया था। तो वहां सत्संग करने जाता था ये दास तलवंडी भाई में, वहां पर दूसरे रविवार को हम सत्संग करने जाते थे। तो वहां कोई बुढ़िया मुर्गी थी गुरुदेव के भक्तों परिवारों में, उनके कोई रिश्तेदार आए हुए थे उनका शोक व्यक्त करने के लिए, तो उन्होंने, वो शुक्र को आए थे, शनिवार को जाने लगे, तो गुरुदेव के सेवकों ने कहा कि आप रुको, कल संडे है, सत्संग सुनना, और आपने सत्संग बहुत सुने होंगे लेकिन ये सत्संग भी सुनकर जाइयो आज। उसे परिवार था, कहने लगा मुझे इतना टाइम नहीं है, कल को एक पार्टी आवेगी और उससे मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट होना है, अनुबंध होगा, एग्रीमेंट, और उसमें मुझे 5 लाख का बेनिफिट होगा। उन्होंने बहुत समझाया, कोई बात ना, कल किस टाइम आओगे, वह 1:30 बजे ही, 1 बजे तो चले जाइयो। नौ से ग्यारह सत्संग होगा, यहाँ से बारह साढ़े ग्यारह खाना खुना खा के चलोगे तो पहुंच जाओगे 2 बजे तक। की बात है यहाँ से निकट रही 3 घंटे का रास्ता। ना मान्या, बोला तुम्हें क्या पता, तुम्हें पता नहीं मेरे बिजनेस का। वो चले गए दोनों, चले गए थे अम्बाला के पास, एक बजरी का भरा हुआ ट्रक खड़ा था और किसी कारण से उसके पिछले पहिए कंडम हो गए थे, वह निकाल रखे थे, जैक ला रखे थे। मारुति कार के अंदर पूरा परिवार था, दो वह थे, दो एक लड़का लड़की थी, और पूरी स्पीड थे कि उसने तो 5 लाख दिखे थे, गाड़ी किते किते पंजे टेके थी, और उस स्पीड में वो ट्रक के नीचे जा टकराई, इतनी स्पीड तक लगी कि वो जैक भी हट गया, डिग गया, और पूरा लोडेड ट्रक, पहले तो ट्रक टकरा में मर लिए होंगे, राख ही कसर काट दीवा, बजरी का लोडेड ट्रक नौका नौक पड़ गया, चारों मर गए। अब चाट ले उस 5 लाख के बेनिफिट ने सिर पैदर। तो पुण्यात्माओं, उनकी दोष नहीं, ये जब तक मालिक परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता, सबकी न्योगी गिबांज रखी काल ने, फिर की बना रखी है, दिन रात बाजले बाजले सपने में भी वह सोचे। तो ये गोबर के भूंड बताए परमात्मा ने, और जो परमात्मा की भक्ति करते हैं और जिनको वो चतुर लोग जो माया के पुजारी ने सोचे हैं कि तीसरे दिन सत्संग में जावे हैं, ये तो अपना नाश करेंगे, हैं के दरिया सत्संग में जानते हैं, अपना धंधा क्यों ना करते, और आप जी को वो अनजान लोग मूर्ख समझते हैं और आमुन ने मूर्ख समझे, क्योंकि हमें ज्ञान हो गया, हमारी आंख बन गई, हमारी ऑपरेशन हो गया मोतियाबिंद का।
2: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
3: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फिश या स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403 8991984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज का पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
4: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
3: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 एफएम इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

0: देव भगवान, अल्लाह खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
1: अकल अलूणे दीखते ये सर्व अकल के मूले, सदा रटे हरि नाम को ये झूले अनहद झूले। परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं ये भक्तों को ये अकल अलूणे कहे, क्यों ना तो टिक्की बिंदी लाओ लाली है हमारी बहन बेटिया, ना नाखून पालिश लाना, क्योंकि हम ना

पीछे रहने लगी, वह मूर्ख लगी। अकल अलूणे दीखते ये सर्व अकल के मूल, और सदा रटे हरि नाम को। ये तो अकल अलूणे दिखे, बिना अकल के दिखा हम भगत, कहते परमात्मा कहते ये तो सारे ज्ञान की जड़ है, इन्होंने तो कति सब कुछ समझ लिया और परमात्मा की भक्ति करे सतलोक में, सुख में सथल में आनंद झूल झूला करेंगे, वहां कोई कुछ भी तो ना करना। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, एक गोबर का भूंड था और वो प्रतिदिन ऐसे उस काम में खूब बिजी था, गोबर इकट्ठे करने में। एक भौरा उसमें जाता था बाग में, भौरा, और भौरे जैसा ही वो गोबर का भूंड होता है। अब बाग के अंदर वो भौरा नाना प्रकार के महक लेता, सुगंध लेता, और वो आकर के उस गोबर के भूंड को देखकर दुखी को कहने लगा, रे भाई आ मेरे साथ, तुझे बाग में घुमा के लाऊं, और वहां से आनंद है ऐसा है। वो भूंड ने कहा, तो अपना काम करे, तू तो करते फालतू, और मुझे टाइम नहीं है तेरा, जितना ना लफंडर नहीं हो, मुझे बहुत काम है, तू अपना काम करे। बौरे ने सोचा, यो देख नालायक, और किस में बिजी हो रहा, सोची एक दिन फिर बैठ गया, दो तीन दिन पाछे फिर समझान लग गया। तो तीसरी बार जब मीटिंग हुई तब कुछ बात सुहाएगी उसने उस गोबर के भूंड ने, और उनके पास बैठने थे क्योंकि फूलों की गंध महक आवे, तो कहने लगा, भाई तू आवे है ना, जब वो गोबर का भूंड कहता भौरे को, आप यहाँ आते हो ना, मुझे आनंद सा आता है, और जहां आप जाते होगे वो तो बहुत ही अच्छी स्थल होगा। कहने का भाव ये है, एक दिन वो राजी कर लिया उस गोबर का भूंड उस भौरे ने कि तू एक बार बाग में चल मेरे साथ, और तेरा कोई बैलेंस काम रहेगा ना गोबर ढोने का, मैं मदद करवा दूंगा आगे तेरी, तू एक बार चल मेरे साथ। वो चला गया। अब उसने तो जाते ही फूल पर बैठा, ऐसा बैठा, ऐसा आनंद आया, उठा कोई नहीं। अब भौरे ने देखा भाई, वो तो शाम का समय हो गया और फूल हो गया बंद, फूल बंद हो गया। तो भौरे को तो पता था कि सुबह जिंदा मेरा सुबह पाओगा, अब तो यू निकल नहीं सकता। सुबह उसने जाकर क्या देखा कि सुबह कोई फूल तोड़ने वाला आ गया, उसने उन फूलों को चुन लिया। वो पता होता था कि ये थोड़ी धूप खिलते ही खिल जाएंगे, पता होता उनको, वो ले गया उन फूलों ने, कुछ बंध्या ने कुछ खिले हुए ने, और उसने अपनी पूजा पाठ करके वो गंगा में बहा दिए। वो भौरा आया, भौरे ने देखा भी फूल टूट गया, ये बिरने कीत पड़ा होगा। वो उसने जाके देखा, पहले तो उस धार्मिक अनुष्ठान पर गया जहां वो क्रिया करी थी, उन्हें फिर देखा वो फूल बाहर रखे थे वहां, उसमें जाकर देखा वो फूल खिल गया, और वो भौरा वो भूंड उससे बैठा फूल पे। जब वो भौरा बोला, रहा आजा डूबेगा तो उठे मेरे साथ आजा, तब उठकाया। तो कहने का भाव ये है, वो भूंड ने बोला, रहा मैंने तो मैं जीवन खो दिया भाई, सारा गोबर इकट्ठा करके, और सुख तो मैंने आज आया जिंदगी में, मेरा पता टह नहीं गया इस तरह से। तो पुण्यात्माओं, जो पुण्यात्मा इस संसारिक धंधे फाइनल मान रहा है, और जो इस सत्संग के सुख से एक बार परिचित हो जाता है, फिर वो भूंड की तरह अटक कोई नहीं यहां से, क्योंकि ये सुख न्यारा है, और वहां सुख है ही नहीं, वो तो एक ब्रह्म माटी है, वो हमारा प्रारब्ध कर्म है। लेकिन परमेश्वर ने यह बताया कि उस प्रारब्ध कर्म करते करते इस मालिक के लिए भी थोड़ा समय निकालो। असंग जन्म तन मृत्या हो गए जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य महल मठ बोरे बहुर न दे धरे रे। यहां आने के लिए आप जी ने परमात्मा के इन फार्मूलों को अप्लाई करना पड़ेगा। जीवित मरण का अर्थ होता है, एक तो ये होता है कि मन चाहता है विकार करना, गोटी शूटी लाना है, पता नहीं कि इसके हवाई किले होते हैं, बीड़ी शराब मास्टमा को सांग सिनेमा देखना, कितना गप्पे आंकना, ताश खेलना, सिनेमा देखना, इनसे मन हटा लेना भी जीवित मरना है। और दूसरा मरना यह है कि मान लीजिए जैसे एक व्यक्ति जा रहा था नाइट सर्विस में, और सुबह उसने वापस आना था, कोई विशेष काम था, और वो नाइट सर्विस वाली बस दुर्घटनाग्रस्त होगी, उसकी मृत्यु होगी उस व्यक्ति की। अब जो व्यक्ति रात ने ट्रेवल कर रहा है तो कितना स्पीड होगा उसके काम की, कितना जल्दी थी उसको वापस आकर मैं ये करूंगा और वो करूंगा, अब उसका काम तमाम हो गया, अब वह जल्दी भी रहेगी।

और काम भी रह गया, कदे नहीं जा सकता, कभी नहीं कर सकता। तो परमात्मा कहते हैं जब आप यहां आने की सोचो तो उस समय ये मान लीजिए आज मेरी मृत्यु हो जाए, और फिर कौन करेगा इस काम ने जिसके ऊपर मैं इसे अनमोल स्थान पर जाने से बाधित हो रहा हूं, वंचित हो रहा हूं। तन्यो सोच ले मैं मर गया और चाल देखी जाएगी, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए मर के देख लो। अब ये 3 दिन हम मर का आगे न सोच ले मर गए, जीवित मर गए, और इस 3 दिन में या 2 दिन में 4 दिन में जितने दिन आप रहोगे, जितना भी कोई काम आपका खराब शराब आप मानते हो हानि होगी तो फिर पूरी कर लेंगे अपना लाग लोग, क्योंकि पहुंच गए हम दोबारा, 3 दिन मरे, और यदि परमानेंट टिकट कट जा जब के कर लेंगे तो भी तो काम रह जाएगा। तो इस प्रकार इन फार्मूला ने अप्लाई करके और आंख मीच कर चल पड़े तब यहां आया जागा ना, काल कति नहीं आन दे। कहते हैं मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु काणे, और संत मिलन को जब चले है ये अटकावे आने। इनका अटकाया अटके नहीं जो संत मिलन को जावे, कहे कबीर सो संत है वो आवागमन नसावे। मात पिता सुत बेटे ने कहे स्त्री, आलस यानी लेजीनस आलस कर जा, और बंधु कान लोकलाज ये बाधक है, जब संत मिलने को चलता है तो ये अटकाती है, इसको रोकती है, बाधक बनते हैं। कई जवान बच्चे आते हैं, मेरा पिताजी स्वयं दारू पीवे शराब पीता है, और मुझे नहीं होगा तू सत्संग जागा तने काट दूंगा तने पीटूंगा, और ऐसा ही करता है, और मैं आता हूं मैं रुक नहीं सकता। ऐसे कई बहन है वो कहती मेरा पति दुखी करता है, मार पीट करता है, और फिर भी मेरे पर रुका नहीं जाता। ऐसे कई भक्त कहते हैं मेरी पत्नी ने कहा जहर खाकर मर जाएंगी जब तू सत्संग में गया था, अब बता क्या करें। लेकिन फिर भक्त कहता भाई मरे चाहे जी गलत जगह तुम्हें जाता ना, अब तो मेरा समझ में आ गई। तो यहां फिर कहीं बंधु कान यानी लोक लाज, कुल परिवार के लोग कहने लग जाएंगे, पड़ोस में बैठ कर चर्चा करेंगे, भाई दोहरा कहेंगे इनका इन अक्ल मारी जारी है, ले है तीसरा दिन जोड़ा ठाव बैग ठाव और चलो सत्संग में जा रही है सत्संग में, कह दे रहा है ये तो है? एक भगत कह रहा था मैं सत्संग का नहीं चल जाना, और मेरे वो दारू पीने मित्र ने कहा अच्छा नौसे तू ये खाकर चली बिल्ली हजकू, तो मैं उनको नो कहूं भाई मैं अब हम तो चल तो पड़े हजकू तुम चले भी नहीं हजकू, तुम अब भी बन रहे ये बुरे कर्म करने। उनकी बातों में उनकी मजाकों में उनके द्वारा दिए गए ये टोंट सहन करता हुआ परमात्मा की जो इस वाणी कसक मन रुकन नहीं देती। जिस बुजुर्ग के बेटे सियाने हो जाए बड़े हो जाते हैं मात पिता के, वो लोक लाज के कारण बच्चों ने कहने लग जाते हैं दूसरे लोग के पा गया तेरे। हमारा एक रिश्तेदार था उसने नाम ले लिया, एक पाठ कराया घर घर जाकर पाठ कराया, अब पाठ कराया तो वो बालक सियाने हो रहे थे, उनके पड़ोसिया ने न्यू बका दिया, उनके बच्चे कहने लगे भाई तेरा बाबू तो पागल हो गया पिताजी, और यू थारा नाश करेगा, देख लाजिए 2000 रुपये अरीब देख लिए तो मेंटल हो लिया। अब वो इसे पीछे पड़े उसका नाम भी छुटवा दिया और करते बार लकड़ने पर भी प्रतिबंध ला दिया, वो ढीला आदमी था ज्ञान समझा नहीं था वो टाल कर गए। तो कहते हैं मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान, और सतगुरु मिलने जब चला ये अटकावे आण, इनका अटकाया अटके नहीं, और सतगुरु यानी संत मिलन को जा, कह कबीर सो संत है वो आवागमन न साव। तो इस प्रकार जब हम परमात्मा के मार्ग पर प्रस्थान करते हैं तो इस तरह की बाधाएं भी हमारे को आती हैं, लेकिन इनको हमने चीरते हुए आगे चलना पड़ेगा।
तो जैसे मीराबाई जी थी, उनको बहुत कुछ लोगों ने भला बुरा भी कहा, लेकिन उसके यह बात समझ में आ गई थी। वो यही कहा करती कि भाई इब चाहे मुझे बुढ़ी कहो चाहे गुंडी कहो, मेरे तो यह बात समझ में आएगी और मैं इस मार्ग से विचलित नहीं हो सकती। असंग जन्म तन मृत्या हो गए जीवित क्यों नाम रह रे, और द्वादश मद महल मठ बोरे फिर बोहर ना देख रहे रे। तो इस प्रकार के फार्मूले अप्लाई करके हम यहां आ सकेंगे और अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। परमात्मा कहते हैं जब ये लोक लाज के कर लेगा तू चार पाया का हो। परमात्मा कहते हैं अब तक तू लोक लाज में भाई कुल बंधुओं की बात तन मान के सत्संग नहीं सुनेगा, और फिर तू गधा बन जाएगा चार पाया का, फिर ये लोक लाज के करेगी तेरे ऊपर बैठेंगे ये लोग। तो अपना पीछा छुटवाना है तो परमात्मा के द्वारा दिए गए इस ज्ञान को स्वीकार करना होगा। अग गए ना बावड़े रहते भी सब जान, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना ना। अब जैसे आपके पास बहुत अच्छी कोई संपत्ति भी है, माता पिता भी हैं, बच्चे भी हैं, और कल मृत्यु होगी, होगी तो कहेंगे उठाओ उठाओ उठाओ जल्दी करो जल्दी करो, और दो घंटे भीतर शमशान घाट पर फूक फाक कर फारिग हो जाएंगे, रोने वाले रोए जाओ। और वो चला गया ऊपर मनमाना फिक्रा कि गधे की यो नीम जागा, और पाछा उसके और नरे लटोटर शुरू कर देंगे। अब वो मान लीजिए को पुण्य आत्मा भी था और मृत्यु होगी, वो चला गया स्वर्ग में। जब स्वर्ग में पुण्य समाप्त हो गए तो कहेंगे वहां से भी समाप्त होते, कहेंगे चल नरक में। अब नरक का समय समाप्त होगा, वहां से कहेंगे चल गधे की योनि में। अब गधे का जीवन पूरा होते हुए चल कुत्ते की योनि में, और फिर 84 लाख योनियों में धक्के खाकर फिर मनमाने फिर मनुष्य जीवन आ जाए। ब्रह्म लोक तक भी गए हुए प्राणी वापस आते हैं, और इस ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्म लोक फाइनल प्लेस है इनका, और ये सबसे अंतिम सुख में स्थल है। और वहां जाने के बाद भी फिर भी चलो चलो केवल सतलोक में जाकर के या चलो चलो समाप्त होगी। अग गए ना बावड़े रहते भी सब जा, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। बिन साहेब यानी परमात्मा सतपुरुष की भक्ति के बिना कहीं ठोर ठिकाना कि तो सथाई सथल नहीं है। पुणात्मा उस सथाई स्थान को पाने के लिए जो श्रीमद भगवत गीता का ज्ञान दाता ब्रह्म कहता है, अर्जुन यदि तुम्हें पूर्ण मोक्ष चाहिए उस तत्वदर्शी संतों की खोज कर, फिर वो जो तुम्हें ज्ञान दे उसके आधार से उस परमात्मा की प्राप्ति कर। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति यानी वहां चलो चलो समाप्त हो जाएगी और सनातन परम धाम शाश्वतम स्थान को प्राप्त होगा, फिर तेरी कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। अपने विषय में चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में अर्जुन गीता ज्ञानदाता कहता कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू भी मरेगा मैं भी मरता हूं। ये अरहट का कुआ लोई यागल बंध्या है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा हरहट डोर बंधे कई बारा। ये कोटिक करता फिरता देख्या हरहट डोर कहूं सुन लेखा, ये चतुर्भुजी भगवान कहावे हर हट डोर बंधे सब कहावे। 600 साल पहले परमात्मा ने कहा था ये तेरे चतुर्भुजी भगवान कहावे ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये भी जन्म मृत्यु के इस चक्कर के अंदर हजारों बार धक्के खा लिए भटक लिए। अब 600 वर्ष पहले ये बातें इतनी कड़वी लगी उन अज्ञानी संतों के अज्ञान के कारण हमने परमात्मा को स्वीकारा नहीं। वही ज्ञान है आप जी को स्वीकारिये हो रहा है क्योंकि आप शिक्षित हो गए, और ये शिक्षा मालिक ने इसलिए दी है कबीर जी ने कि मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे। अब ये पीक टाइम है, ये भक्ति युग है, भक्ति काल शुरू हो गया, भक्ति का समय शुरू हो गया। यह बिचली पीढ़ी है, पहले जब परमात्मा आए थे कलयुग के प्रथम चरण में, मैं घर से गए थे वह सह शरीर,
धर्मदास जी को मिले थे, तब कहा था धर्मदास जी इस ज्ञान ने लिपिबद्ध कर ले और अभी इस मूल ज्ञान को किसी को समझाना नहीं, और यो मेरे वाला ज्ञान किसी के समझ माव को ना बिना समझाए बिना मेरे बिना, परमात्मा कहते हैं। और धर्मदास तो लाख दोहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाए, और मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी, और मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब लग द्वादश पंथ मिट जाए। काल ने कहा था परमात्मा से सतयुग में, प्रथम सतयुग में कहा था कि द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, और द्वादश पंथ नाम जो ले ही वो मेरे मुख में आन समय ही, और अनेक पंथ चलाऊं और नाम तुम्हारा ले आवाज लगाऊं। अपने आत्मा यहां बात आकर जाती है कि भाई ये दास ये जो बात कह रहा तो है तो सच्ची कति सच है, लेकिन यह सच जचे को नहीं, इसको जचाने के लिए थोड़ा सा और लालटन दिखानी पड़ेगी। पुण्यात्माओं तुम्हारा सौभाग्य है, आप जी को ये खजाना मिल गया। पहले हम जब स्मारक पना लगे थे ना, VCR चल रहे थे, इतनी लंबी बड़ी कैसेट वार दी, तीन तीन घंटे की एक, और वो लिया करते किराए पे, अन्यों का करते 100 रुपये एक एक रात के, तीनों सोचा करते तीन फिल्म ले चाल तीनों देखेंगे, चाह बनवाए जाते पिए जाते हर नौ अखबारे देखे जाते 9 घंटे ताई तक 100 रुपये ला रखे, सारी कसर काटाएंगे, सारी बकवाद करा करते। और यहां परमात्मा के नाम पर अमृत वर्ष है, आत्मा भीग रही है आपकी, ये सत्कर मानना, और बहुत से पाप कट रहे इस माल्य की इस अमृतवाणी से आपके, तो इसलिए दास चाहता है कि आप जी को इतना अधिक से अधिक डोज दे दूं ताकि ये रोग शीघ्र नष्ट हो जाए अज्ञान रूपी, और फिर जन्म मृत्यु का रोग फटेगा। एक कुमार ने किते शेर की खाल पाएगी खेतों में जंगल में, और उसने लाकर अपने गधे पर डाल दी, फिर उसके मन में आई कि इसने मारे दो लट खेतों में चला जा छक्का होगा सांझ ने, शाम ने दे दूंगा धक्के तड़के न पकड़ जाऊंगा, वो ऐसे कर दे। उसने शाम ने गधे पर शेर की खाल डाल के और खेतों में छोड़ आवे, और गधा खूब छक्के उड़े वो खेती थे, और रखवाले देखण जावे के है निकट जावे देखे तो शेर बाज ने छोड़ के गांव में आ जा शेर आ रहा शेर आए। एक हफ्ता हो गया उसने बहुत से वो खराब कर दी खेती, आस पास गांव में चर्चा बोली भाई शेर आ रहा है सारी खेती खराब कर दे। एक कुमार था समझदार सा, उसने सोचा दूसरे गांव का भाई खेती शेर खेती तो ना खाया करे, या जरूर कोई चाल पाओगी गधे पर खाल पाओगी। उसने आकर कहा गांव वालों से भाई थारे शेर ने तो मैं पकड़ दू, मैं क्यों कर पकड़ेगा कि मैं 5-4 गधे ले चलूंगा अपने, मैं देखी जाके एक आध गधे ने खा लेगा पछाणता आ जाएगी शेर से के शेर खेती तो ना खाया करे। मैं बोला रहा मर जाएगा भाई हम नहीं चलना गांव वाले के, वो कहने लगा भाई तुम नो करियो ऊपर वृक्ष पर बैठ जाइयो ऊंचे पे। बोला भाई ठीक सर, तो ऐसा ही किया वो ऊपर बैठा दिए और वो गधे छोड़ दिए थोड़ी दूरी पे, वो कुमार ने अपना गधा छोड़ा और शेर थोड़ी देर में गधा ने बोली बोली फिर हु करने लगे, तो भी लगा हु करता आया उछलता हुआ खाल कीता वो गधा में आके मिल गया, वह खाल उतरते गधा का गधार बोली तो मेरा पिट गया गधा है। जब गांव वाला नो कुमार भी गड़िया और गधा भी तोड़िया दे लठा, शेर की दाड़ गधे की ब्याह ब्याह तो नारा पता लग जाए। तो ज्ञान से इस बोली से पता लगेगा संत और असंत का। को पंडित जी काशी पटकाया था और उस नगरी के राजा ने किसी ने बता रखा तू धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ याग करा ले पाठ करवा किसी के जप करवा ले जप कोई पाठ करा, ब्राह्मण थे 7 ब्राह्मण बुलाने थे। अब मंत्री जी को पता लगा अभी विद्वान पुरुष है राजा का काम है को अच्छे छांट छांट के ब्राह्मण बुलाने पड़ेंगे, एक तो वो बुला लिया जो विद्वान पुरुष था। तो रोजाना एक सोने की मोहर दान करे, जो सोने की मोहर प्रथम दान की उस काशी विद्यापीठ से पढ़े हुए ब्राह्मण को उसने अपनी पत्नी को दिया, उसकी पत्नी फिर नए नए सूट लियाई कितना बढ़िया श्रृंगार लियाई। 2-3 दिन हो गए पहले पानी के कुओं के ऊपर इकट्ठी हुआ करती गांव की स्त्रियां,
तो नए नए पहन के चल रही, तो वो दूसरी ब्राह्मणी कहने लगी, ब्राह्मणों का अलग कुए हुआ करते, कि तू इतना पैसा कहां से लाओ हो तुम, कि मेरा पति जो है ना राजा के वहां पाठ करने जाया करे, और रोजाना एक अशरफ ही देता राजा। उस ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि ऐसे ऐसे उसका पति राजा के यहाँ पाठ करने जाता है, अन्य सुना उड़े सात ब्राह्मणा की जरूरत है, अभी तक एक ही पाया है, आप भी चले जाओ। अब वो कहने लगा, भगवान मैं इतना पढ़ा लिखा हूं नहीं, मैं तो काम चलाऊ लोग बगाड़िया हूं, और वो पढ़ा एजुकेटेड आदमी है, शिक्षित है, मेरी बड़ा दाल नागड़ है। तो अब ब्राह्मणी मरोड़ी खागी, इन्हें बोली तू तो टाइम पाया कर लिया करा करे, है तने कुछ करना सह को नहीं। उन्हें सोची देखी जाएगी, रोज लड़ाई होगी, इसका अच्छा तो वही देख लो कि मैं वो ले गया अपना देह का काख में कोठी चल पड़ा। मंत्री जी से कहा, जी मैं अभी ब्राह्मण हूं, कहा जा भाई मैंने तो जरूर थी, बहुत अच्छा हो गया। मंत्री जी ने सोचा टोटल सात पूरे करने हो जाएंगे, राजा नाराज ना होगा, बैठा जग बैठ जा पंडित। अब वो पहले वाला तो संस्कृत पढ़ा है अपने पाठ करे, और वो नौकर जो यू के वह सही, जो यू के वह सही, तो दोनों ने सामने एक एक अशरफी मिल गई। अब तीसरी का और ऐसे ही तीसरी को पता लगा, उसने अपना पति सिंगार दिया कि तू भी जा ब्राह्मण है, वो भी जा बैठा। उसने पहले वाला तो बोला ठीक, दूसरा नौका जो यू के वह सही, दो यू के वह सही, और तीसरा नौका कब तक निभाएगी, कब तक निभाएगी। ऐसे ही फिर एक चौथी ने और सिंगार दिया अपना, वो भी बैठ गया। तो वो पहला अपना पढ़ता संस्कृत, दूसरा कहता है जो यू के वह सही, दो यू वह सही, तीसरा नौका कब तक निभाएगी, चौथा नौका निभण दो जब तक निभाएगी। अब इन पंथाणा के लिए न्यू बन रही है, अभी न सब न पता लग गया, थरी खाल उतर लग रही है, और तुम्हारे चेले ही भागने वाले हैं थोड़े दिन में, और उनके जो बना रखे ना परिचर, अब उनको पता लग लिया वही बात तो बिगड़ेगी, पर न्यू सोचे हैं देखी जाएगी, इतने निम्बण दे जब तक निम्बेगी। तो पुण्यात्माओं परमात्मा बताते हैं, आग गए ना बावड़े रहते भी सब जा, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोड़ ठगाना ना, जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आवे, गरीब दास कर बंदगी भाई बहुर ना ऐसा दावे। ऐसा सुअवसर मानुष जन्म या बिजली पिंडी और यथार्थ ज्ञान आपके सामने है, तो परमात्मा कहते हैं समझा है तो सर दर पाओ और बहुर नहीं रे ऐसा दावे।

0: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
1: कैलग्रीज इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2332 32nd Avenue North East Calgary।

0: प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक कैसडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं तारा कैसडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है यां तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। एबीएम कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या आईटी प्रोग्राम्स दी जानकारी लैण लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300 और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हों तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: साध संग हर हर

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन लई आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144-3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507, 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर

राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारी जी तू जिया का दातारा हर त्यावह संत हो जी सब दुख विसारण हारा हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक भिखारी जी सब तेरे चोज विडाणा

आख बखाणा। जो सेवह जो सेवह तुद जी, जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी, से जन जुग मह सुख वासी। से मुकत भए, जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी। जिन निरभउ जिन हर निरभउ, त्याया जी, तिन का भउ सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, परे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनेक करह हर पूजा जी, तप तप है जप है बेअंता। तेरे अनेक पढ़ बहु सिमरत सास्त जी, कर किरिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरख अपरंपर करता जी, तुद जे वड अवर न कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा, तू एको जी, तू निहचल करता सोई। तुद आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करह सो होई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जान ओई। आसा महला चौथा, तू करता सचियार मैडा साई। जो तौ भावै सोई थीसी, जो तू देह सोई हौ पाई। रहाओ सब तेरी, तू सब नी त्याया, जिसनो कृपा करह तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मनमुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरिया सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी अजंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना एह सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाण। जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोई। तू कर कर वेखह जानह सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सरवरण पईले निवासा। पानी पावक तिन है किया, पंक जो मोह पग नहीं चाले। हम देखा तह डूबी अले, मन एक न चेतस मूढ़ मना। हर बिसरत तेरे गुण गलिया, रहाओ ना हो जति सती नहीं पढ़िया। मूर्ख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिन की सरणा, जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा, पई परापत मानुख देहुरिया। गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरै कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग भवजल तरन कै,
जन्म वृथा जाते रंग माया कै रहाउ जाप।

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सब तुम काव हो, आप हाथ दे मोह बचाव हो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब बैरन को आज संगरिए। पूरन होए हमारी आशा, तोरे भजन की रह प्यासा। तुम है शाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहाऊं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए। हु जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुज जू करिया हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारी, साहिब संत सहाय प्यारी। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाई ब्रह्मा बप तरा, काल पाई शिवजू अवतरा। काल पाई कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझिया हो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जब उद करख करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्टि सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनादि असंब। ताका मूड उचारत भेदा, जाको पेव न पावत बेदा। ताक कर पाहन अनुमानत, महामूड कश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत पुज खान बहुर रच दीनी।
कहूँ फूल राजा होय बैठा, कहूँ सिमट पयो शंकर इकैठा। सिगरी सृष्टि दिखाए अचंपव, आदि जुगादि स्वरूप स्वयं पव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगर। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलीश करो रण काता। जे अस तुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताकि काल निकट नह है। रक्षा होय ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताकि ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह स्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहि उबारा। जिन नार नाम तिहारो कहा, दा

सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कह हम एक न जाने ओ श्री असपान कृपा तुमरी कर

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावण आईया शब्दो ता गावह हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारणा सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरै घर ता तेरै सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही घर तेरै साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहाओ जिस दिया एह वडियाईया कह नानक सुन हो संत हो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सभागै घर सभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वास कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख होआ तित घर आन।

वाज्यान हाद तूरे मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तीन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब आधारो जे को खावै जे को पुंचै तिसका होय उधारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख उर धारो तम संसार चरण लग तरियै सब नानक ब्रह्म पसारो। सलो

ਸਾਰਸਨਾ ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ।

श्रवण पले सोब नी कह मेरी जिंदड़िए। हर कीर्तन सुन है हर तेरी राम, सो सीस पला पवित्र पावन है मेरी जिंदड़िए। जो जाए लगे गुर पैरी राम, नानक गुर विटहौ वारिया मेरी जिंदड़िए। जिन हर हर नाम च तेरे राम, सफल जन्म गुरमुख होए जन्म जीतियो। चरण सफल गुर मार्ग रवन कै, सफल जन्म गुरमुख होए जन्म जीतियो। चरण सफल गुर मार्ग रवन कै, लोचन सफल गुर दर सबा लोकन देखे। मस्तक सफल राजपद रवन कै, मस्तक सफल राजपद रवन कै। सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला, नाम जपंदड़ी लाली। पंद जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, गुर दर्शन देख निहाली। पाव सुहावे जातौ तिर जुल दे, सीस सुहावा चरणी। मुख सुहावा जातौ जस गावै, जियो पया तौ सरणी। सो कहौ टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाई।

सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहां दे साहु।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुन दे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।